भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं, धर्म शास्त्रों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। हर एक अवतार जिस कारण होता है, वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हेतु अनेक हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई नहीं जान सकता। शिवजी ने पार्वती को श्रीहरि के दो द्वारपालों जय और विजय की कथा सुनाई, जो सनकादि

ब्राह्मण के शाप के कारण हिरण्यकश्यपु तथा हिरण्ययाक्ष के रूप में मनुष्य योनि में पैदा हुए थे। हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए नरसिंह अवतार हुआ तथा हिरण्यक्ष का वध प्रभु ने वराह का शरीर धारण करके किया, किंतु स्वयं प्रभु के द्वारा मारे जाने के बाद भी उनकी मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि ब्राह्मण का शाप 3 जन्मों के लिए था। कालांतर में यही दोनों रावण तथा कुंभकर्ण नामक महाबली राक्षस हुए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस बाल कांड भाग 48। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. भारत वियतनाम देशयोर मध्ये डिजिटल प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजाः चिकित्सा विनिमयनम् सार्वजनिक क्षेत्रस्य लेखा परीक्षा डिजिटल व्यवहारः संस्कृतिः पर्यटनम् इत्यादिषु बहुविध क्षेत्रेषु सन्धयः कृताः. नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ वियतनाम राष्ट्रपतिः टोलाम इत्यनयोर्मध्ये द्विपक्षीय वार्तायाः अनन्तरं सन्धि विज्ञप्तिपत्रेषु हस्ताक्षराणि कृतानि. संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् व्यापक विमर्शानन्तरं पक्षद्वयेन स्वसम्बन्धं वर्धित व्यापक रणनीतिक सहयोग पर्यन्तं अग्रे साधयितुं निर्णयः कृतः.
1: कल्चर कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा. भारत और वियतनाम का बायलेटरल ट्रेड पिछले एक दशक में डबल होकर 16 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है. 2030 तक इसे 25 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए हमने आज कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं.
0: राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः ह्यः सायं राष्ट्रपतिभवने

सरतादी लोकासी लोकासी लाइन या बरहासिल दी हान चुरकान मुर मुरीद मरुपकान काम तिम्पत बर नांगुन पांडर टेरिज अजमल कसाब दान डेविड हेडली अंगतन उडारा सुनांतिया सामन जाका माता दी अंग सा गुना मरे मरे काम दान मंबावा पुलांग वक्ति कबर हासिलान सरंगान सरंगान तर से वो टारगेट टारगेट यंग दी रसार बोले अंगतान उदारा इंडिया मलिपुति मुरीद के बर भवलपुर दान सो जुमला लोकासी लाइन या मुलालू एनालिसिस पर जाना दर एक सेक्सी यंग चरमेट इंडिया भर हासिल ममू सुहान खान सलुरु सम्मिलन खेम टेरिस दर्शबुत मुलालू सरंगान प्रसिसी संबारी मंगहारी तरजादी न्या करो सहान इकुतान अपापुन अंकतान बर से जानत मम बागी कान गंबार गंबार यंग तरपंची यंग एक्सप्लिसिट मंगनाई काम काम तेरे रेस यंग तेला हद्दी हांचुर कान दी विलाया पाकिस्तान अंकतान उडारा इंडिया जुगा से नास्तिया सा मंजागा सिस्टम पर तहानान उडारा यंग तांगू दी सब पांजांग परवादासा नगारा पारातांगल तुजू लपान दान संबिलान में ही पाकिस्तान मालून चुरकान किंदारान उदारा निरावा सरता अमुनुसी जला जा यांग दी रहाकान का आरा वर्गा सिपिल माउपुन इंस्टिलियासी मिलीटर कामी सलूरू ऑब्जेक्ट तरसिबुत बर हासिल दी लुम्पुह कान दीदा आरा कर रुसाकान यांग मनिम्बा वर्गा सिपिल माउपुन पंगलाकान मिलीटर कामी हाल यांग सुंगू मंगजूत खान अदाला कन्यातायान बाबा समेतारा इंडिया मनार्गित खान पारा तेरिस पाकिस्तान चुस्त्रू मनार्गित खान वार्गा से पिल इंडिया इंडिया जुगा मंग हाचुर खान सिस्टम पर तहानान उडारा रडार पुसत कमांडो सरता डेपोट अमुनुसी दन लॉजिस्टिक पाकिस्तान दे लाहौर गुजरान वाला सरगोदा चकला रहीम यार खान शुक्र दनमुरी पाकिस्तान वाल जनचारा कान कंपानिया दिस इंफॉर्मासी दे रिंग यंग संगीत निगारा तरसबुत बरु पाया मरे रंगा इंडिया देंगन किसा किसा यंग तिदा बरदासार दन प्रोपेगेंडा पालसू मलालुई कंपानिया दिस इंफॉर्मासी इनी पाकिस्तान बरतुन जुकान ममुतुर ममुतार बालिकान कबिनारान मने तस्कान पब्लिक क्लोफल दन मम अजुकान नर नरासी पालसू यंग दी न्यू सुंगान्या इंडिया मा रेस्पॉन्स सचारा प्रोएक्टिव दिंगान मनिया बिचकान फाक्टा फाक्टा मम उजुकान कवर्डासान डिजिटल यांग तांगा इंडिया मम पर लिहातकान पर पंडे खातान यांग तेंगन तेनांग दान मितुल्ली सिद्धाला मंग हडापी परांग डिस इन्फॉर्मासी तरसबुत एक्टिव इफेक्टिविटास ओपरा से सिंदूर दिस कम्युनिकेसी दिंगान प्रसिसी बरफुकुस पड़ा पर चपयान हासिल से तुर्किस अली अली सिस्नलिज्म ऑथोरिटास इंडिया मंगोर बकान टैक्टिक मैनिपुलासी यांग दी गुनाकान ओले अकुन अकुन बर बेसिस दी पाकिस्तान बान्याक दी अंतरान्या किन्नी से डांग दी से ली दी की चारा से चरमत ओले बर बगई इस प्लेटफॉर्म मीडिया सोशल इंटरनेशनल ऑपरेशन सिंदूर मरुपकान डोमिस्ट्रासी न्यादा यंग सिग्निफिकेंट अतास का कुआतान मिलिटर दानसे तुर्किस इंडिया यंग दी लाक्सकान मललुई कॉम्बिनासी सराना मिलिटर दानोल मिलिटर ऑपरेशन मल्टीडेमनेसी इनी सचारा एक्टिव मनाल मनेल थ्राल कान अंचमान टेररिज्म मनेगाल कान अग्रेसिव पाकिस्तान सरता मनेगान कान तेंगान तेगस का भी जान तांपा टॉलरेंसी इंडिया तर हडा टेररिज्म ऑपरेशन इनी तेताप मंजागा सिक्का पंगेनाकान थे तुर्की संबरी मराली दिगु डुकुंगान इंटरनेशनल मोमेंट क्रिसिस नेशनल इनी मने बुतकान बुकान से कदर कर तिंगुहान मलाइन कान कप मेंपिनान यांग लुआर बिया सासोसोक यांग तांपिल मंजवाब तातांगान इनी अडाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांग पिरान तांगासान या दलम अपरासे सिंदूर मंडना ई सारा साधु रिस्पॉन्स मिलिटर पालिंग बरनारी यंग परना लाकुकान इंडिया दलाम सजारा तरकीनी मस्कीपुन से डांग बड़ाडा दी लुआर नगरी दलाम रंका कुंजुंगा डिप्लोमेटिक यंग तेला दी जदवालकान सब लूम न्या बाबक मोदी देंगान सिगब मंगामिल अली कोमोरो मेरेन चांगान सबुआ रिस्पॉन्स यांग मने बिकान सिकप मने हान दीदी
सचानक से तुर्किस देंगन तेंदा कानियांग तेगस या ममुंजुकान सिरकाप मन हा दीदी यांग लुआर बिया सादी तेंगा ते तिकाना हे बात उन्तुक बर तिंगा चेपात सरता ममासिकान बाबा सत्य प्लांका मुलाई दारी पनम बंगुहान पर जानजियान ऐड इंदुस हिंगा तेंदाकार मिली तर तेला दी रन चानाकान देंगान मतांग दान थी एक्सक्लूसी देंगान कते पक्तान वक्तु यांग प्रेसीसी कपूत तुसान प्रधानमंत्री मोदी उन्तुक मरेंगा कान पंजांजियान ऐड इंदुस मर पकान सबुआ लंका बर से जा रहा लंका यांग दीदा हान्या म रुई कान कपन दिंगान पाकिस्तान ते तापे जुगामंग उतु गुंतुं कान इंडिया यह मंतपात सबुआ डॉक्ट्रिन किया माना नेशनल यांग बारु सत्याप सरांगान टेरर यांग तरजादी दी मासा दपान अकान दे पर लागू कान सबगाई तिंदा कान वरांग हाल इनी मंग हापुस कान पंबेडांग समूह अंतारा पारा टेररिस्ट इतु सिंडीरी देंगा नगारा नगारा यंग मंजादी स्पॉन्सर मरेगा सात बार पिटारो दी हड़पान सलुरु बंगसा परतांगल 12 मई 2022 पुलुली मा प्रधानमंत्री मनतकान बाबा उप्रेसी सिंदूर बुकान सकेदार सबुआना मा मलाइन कान चरमिन कान दारी परासान जातु जुतान राक्या दी नगरी इनी सकाले गो सबुआ इकरार केरला ने यांग तक तरपुतुसान या मंग ने गास्कान इंडे तेता बर को बिनमेट उन्तुक वनाम्बिल मंगाम्बिल लंका लंका तेगस दमी मंजागा कर दौलतान पर बातासान ने सरता कर से ला मतान राक्यात ना दी मैदान पर प्रतिमपुर रांद कीता सनास्तिया सा बरासल मंगलाकान पाकिस्तान दान ओबरासे सिंदूर तेला मने बाकान देमेंसी बारू दालाम सजारा तरसेबुत जिका तरजादी सरंगान टेररी सरहद अप इंडिया माका आकान दी बरीकान बालासान यांग सतिमपाल इंद तीदा आकान मलोरेंसी सगाला बंतुक परमेर सारान नुक्लियर इंडिया आकान मलांचारा कान सरंगान यांग प्रसिसी दान तेगा सरहद अप तिमपा तिमपार परसुंबुइन या टेररिस इंडिया तीदा आकान मम्बेडा बेडा अंदारा पमरिंथा यांग मन स्पॉन्सर्ड सी टेररिज्म देंगान पारदा दालांग दिवालिक अक्सी अक्सी टेररिस्ट तरसेबुत न्यू दिल्ली अकान तरस मंगाम्बे लांका लांका तेगस दमी मलिंदु की इंडिया दन सनगा फरगा नगारा दारी से गाला बंदुक अनजान या से लका इंडिया सतंगा जला तेरर दान दिलोक तिदा दपात बरजलान बरेंगिन तेरर दान पड़तगंगा तिरा दपार बरजलान बरेंगिन सरता ईर्दन दारा तेरा दबाद मंगल मंगाली सचारा बड़ा सामान हासिल हासिल अंग दिच्छे पयान मला लुई ओपरासी सिन दूर तेला बर बिचारा लंतांग मंगनाई दंपाक दान सिग्निफिकासी न्या दमिक्यान ताड़ी कमेंटा आर सोडर और सोनाडा फंडिंग का अरका में मासी बरसामा तेंग्यान सेरान रेडियो इंडिया दलाम आचारा सारांचुत न्या इनी इकुतिल्या लागू राख्या दारिदेरा बंगाल

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमरीका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो न तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम एआईएडीएमके से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। श्रमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
4: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा।

0: जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
2: We have a deep and trusted relationship.
3: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
2: In its developmental journey.
1: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है। हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है जिसने जारी अमरीका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
5: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। बिहार चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी टू एक्सपैंड हिज कैबिनेट टुडे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अमंग होस्ट ऑफ डिग्निटरीज टू अटेंड स्वेरिंग इन सेरेमनी इन पटना। Newly elected Congress MLAs of Keralam to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Bengal BJP leader Shubhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah and several senior NDA leaders will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna at 12:10 p.m. Our correspondent reports that the cabinet expansion is being carried out based on the formula followed in the previous government. Around 15 BJP and 14 JDU MLAs are likely to take oath as ministers. Additionally, two ministers from Lok Janashakti Party Ram Vilas and one each from Hindustani Awam Morcha and Rashtriya Lok Morcha are expected to be inducted. The newly elected Congress MLAs of Keralam will meet at Thiruvananthapuram today to elect their leader. Congress-led UDF, which secured 104 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai today. More from our correspondent.
8: In Kerala, meeting of the newly elected legislators of Congress will be held today morning at Thiruvananthapuram. In the meantime, AACC observers who reached last night at Thiruvananthapuram will continue discussions with the individual MLAs. On the other hand, informal discussions between various constituents of UDF is also progressing on the ministerialship positions. Congress sources hinted that an immediate decision will be taken regarding the chief ministership and approach the governor to form government.
7: In Tamil Nadu, DMK chief M.K. Stalin has said that his party respects the people's mandate for a new party assuming power in the state, and he does not want another election or a constitutional crisis. He also said that his party will not stay in the way for the formation of a new government. Mr. Stalin also rejected the rumours that DMK is in talks with AIADMK to form the next government. In a shocking incident, Chandranath Rath, close aide of BJP leader Shubhendu Adhikari, was shot dead by unidentified assailants in Madhyam Gram, North Chobis Parganas district of West Bengal. We have more from our correspondent.
9: Reports say that

0: wildcat, one of world's smallest species of wildcats and classified as near threatened, has been sighted along with her tiny offspring in the Aravali scrublands at the doorstep of Delhi, reports the Indian Express. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pehalgam terror attack. Bihar Chief Minister Samraj Chaudhary to expand his cabinet today. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah among host of dignitaries to attend swearing-in ceremony in Patna. Newly elected Congress MLAs of Kerala to meet in Thiruvananthapuram today to elect their leader. Bengal BJP leader Subhendu Adhikari's close aide shot dead in North Chobbis Parganas district of West Bengal. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz, and Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा. आदाब. खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर. पहले इस वक्त की खास खास खबरें. भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है. बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे. वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हल्फ बरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे. केरलम में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकान असेंबली आज अपना पार्टी लीडर मुंतखब करने के लिए तिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे. मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शिमाली 24 परगना जिले में गोली मार कर हलाक कर दिया गया. अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं. फ्रांस ने आबनाए हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहर अहमर में तैनात कर दिया है. और दिल्ली 2026 की दौलत मुश्तरक टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा. अब खबरें तफसील से. मुल्क में आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल हो रहा है. पिछले साल 7 मई को आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का आगाज किया था और इसके तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 9 बुनियादी ढांचों को तबाह करने और पाकिस्तान के जेर तसल्लुत कश्मीर में कम से कम 100 दहशतगर्दों को हलाक करने के लिए हवाई हमले किए गए थे. भारत का ऑपरेशन सिंदूर पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर पाकिस्तान की सरपरस्ती वाले वहशियाना दहशतगर्दाना हमले का मुंह तोड़ जवाब था. तफसील हमारे नामा निगार से.
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत की फौजी और स्ट्रेटेजिक ताकत का एक अहम मुजाहरा था जिसे फौजी और गैर फौजी जराये के इश्तराक से अंजाम दिया गया. इस कसीर जैती ऑपरेशन ने दहशतगर्दाना खतरात को असरदार तरीके से नाकारा बना दिया. पाकिस्तानी जारियत पर रोक लगाई और दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी को सख्ती से नाफिज किया. इस ऑपरेशन के दौरान बैन अल-अक़वामी हिमायत हासिल करते हुए स्ट्रेटेजिक तहम्मुल को बरकरार रखा गया. ये ऑपरेशन दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद और इसका मंसूबा बनाने वालों को सजा देने के लिए चलाया गया था ताकि सरहद पार दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को तबाह किया जा सके. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्ला फौज ने दहशतगर्दी के मंजरनामे का बारीक बीनी से जायजा लिया और मुतादिद दहशतगर्द कैंपों और तरबियती मकामात की निशानदेही की. ये ऑपरेशन अपनी कामयाबी की खुद गवाही देता है जिसके नतीजे में दहशतगर्दों के 9 बड़े कैंपों को तबाह कर दिया गया. पाकिस्तान के 11 फजाई अड्डों पर हमला किया गया और हाई प्रोफाइल दहशतगर्दों का खात्मा हुआ. ये हमले बहुत शदीद थे और भारत ने उन्हें पेशा वाराना अकदार और तामुल से अंजाम दिया जिसमें सिर्फ दहशतगर्दाना अहदाफ को भी निशाना बनाया गया था और आम शहरियों को नुकसान पहुंचाने से गुरेज किया गया. इस भारी नुकसान के बायस पाकिस्तान जंगबंदी पर मजबूर हो गया. नई दिल्ली ने यह ऑपरेशन न सिर्फ कामयाबी के साथ अंजाम दिया बल्कि इससे भारत की फौजी ताकत और इसकी तीनों अफवाज भारतीय फजाई फौज भारतीय बरी फौज और भारतीय बहरिया की मरबूत कार्रवाई का भी मुजाहरा हुआ. इस ऑपरेशन ने जदीद दिफाई निजामों की बरामद में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों को भी उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के सख्त मौकिफ और उसकी तबाहकुन फौजी ताकत का इजहार है। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल मालिक।
2: भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरा होने के मौके पर एक वीडियो साझा की है, जिसमें पाकिस्तान की शह पर होने वाली दहशतगर्दी पर भारत की बरवक्त तो मौसर जवाबी कार्रवाई को पेश किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क की पुख्ता जवाबी कार्रवाई को उजागर किया है और मुल्क के इक्तदार आला और शहरियों के तहफ्फुज के तई अपने अज़्म का इआदा किया है।
4: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
5: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
2: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ला अफवाज की बहादुरी, जुरतमंदी और कुर्बानियों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दिफा ने इस बात का जिक्र किया कि मुल्क की सलामती की खातिर मुसल्ला अफवाज की जुरतमंदी, हौसलामंदी और लगन जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की कार्रवाई बेमिसाल दुरुस्ती, बाहमी हमाहंगी और मुख्तलिफ अस्करी खिदमात के दरमियान गहरे इश्तराक का मुजाहरा किया, जिसने जदीद फौजी कार्रवाइयों के लिए एक नई मिसाल कायम की। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर संजय सरोगी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन और एनडीए के कई सीनियर लीडरान आज से पहर पटना में गांधी मैदान में होने वाली हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
6: काबीना में तौसी साबिका हुकूमत में अपनाए गए फार्मूले की बुनियाद पर की जा रही है। उम्मीद है कि तकरीबन बीजेपी के 15 और जेडीयू के 14 असेंबली अरकान वुजरा की हैसियत से हलफ लेंगे। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के एक एक असेंबली मेंबर को भी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। तवक्को है कि काबीना में बेशतर ओहदे बीजेपी और जेडीयू के जाने पहचाने मेंबरों को दिए जाएंगे। अलबत्ता कुछ नए चेहरे भी काबीना में शामिल किए जा सकते हैं। जेडीयू से निशांत कुमार के नाम पर भी बहस जारी है। पटना से निधिश्री की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: काबीना में मुमकिन तौर पर शामिल किए जाने वालों में एलजेपी रामविलास के संजय सिंह और संजय पासवान का नाम शामिल है, जबकि हिंदुस्तान अवामी मोर्चा से संतोष कुमार सुमन और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एमएलए स्नेह लता को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। केरलम में कांग्रेस के 9 मुंतखब अरकान असेंबली अपना लीडर मुंतखब करने के लिए आज तिरुवनंतपुरम में मीटिंग करेंगे। कांग्रेस की क्यादत वाले यूडीएफ ने रियासत की 140 रुकनी असेंबली में 104 सीटें जीती हैं और ये रियासती गवर्नर के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे मुलाकात करेगा। केरला के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, जो तमिलनाडु की इजाफी जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, इस वक्त चेन्नई में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल में शिमाली परगना जिले के मध्यम ग्रम में नामालूम हमलावरों ने बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी साथी चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक कर दिया। इत्तलात के मुताबिक मोटरबाइक पर सवार हमलावरों ने कल रात दोहारिया में उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे चंद्रनाथ को शदीद जख्मी हालत में एक मकामी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उनके वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उनका ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी गोलियां लगने से जख्मी हो गया और उसे जख्मी हालत में कोलकाता के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। चंद्रनाथ का ताल्लुक मशरिकी मिदनापुर से था और वो काफी तवील अरसे से मध्यम ग्राम के रिहायशी थे और वो बीजेपी उस टीम का हिस्सा थे जिसने भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी के लिए काम किया था। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ को गोली मारकर हलाक करने की तहकीकात शुरू कर दी है। डीजीपी सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल हुई एक गाड़ी पहले ही बरामद कर ली है। बताया जाता है कि हमलावर चार बाइक पर सवार होकर आए थे।

बीजेपी के लीडरों ने इस बहीमाना हरकत के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी को मौरिद इल्जाम ठहराया है। कांग्रेस बाएं बाजू और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के जाति मुआविन को हलाक किए जाने की मजम्मत की है। इसी दौरान बीजेपी के एक दूसरे कारकुन रोहित राय को शिमाली 24 परगना जिले के बासिरहाट में गोली मार दी गई, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मगरबी बंगाल में नौमंतखब बीजेपी की हुकूमत की हलफबरदारी की तकरीब रविन्द्र जयंती के मौके पर कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हफ्ते को सुबह 10 बजे होगी, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों के कई वजराए आला शिरकत करेंगे। बीजेपी के रियासती सदर शमिक भट्टाचार्य ने जोर देते हुए कहा है कि अगर ममता बैनर्जी वजीर आला की हैसियत से इस्तीफा नहीं देती हैं तो अलफबरदारी की तकरीब आईनी तकाजों के मुताबिक पूरी सख्ती से अंजाम दी जाएगी। अमरीका और ईरान इब्तदाई तौर पर मुफाहमत के लिए एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं ताकि इलाकाई वसाइल के साथ मगरबी एशिया में तनाजे को हल किया जा सके। इस सिलसिले में मेमोरेंडम के एक मुसवदे पर बातचीत सरगर्म अमल दिखाई देती है। 14 पॉइंट का एक फ्रेमवर्क 30 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा, जिससे कि एक वसी तर समझौते की जानिब मुजाकरात हो सकें। तेहरान का कहना है कि वो अब भी इस तजवीज का जायजा ले रहा है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सूरत हाल को कंट्रोल में बताया है, लेकिन खबरदार किया है कि अगर बातचीत नाकाम होती है तो फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाएगी। इधर इसराइली जराये के मुताबिक वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू ने मुजाकरात की पेशरफ्त के सिलसिले में अमरीकी एहलकारों के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं। इस दौरान इसराइल ने बैरूत के जनूबी नवाह में एक कार्रवाई के दौरान हिजबुल्लाह के एक सीनियर कमांडर को निशाना बनाने की तस्दीक की है। जंगबंदी के बाद से लबनान की राजधानी में इस तरह का ये पहली फौजी कार्रवाई है, इससे कशीदगी में इजाफा हो सकता है। फ्रांस ने आबनाए हुरमुज को महफूज बनाने के लिए एक अहम मिशन के तौर पर बहर अहमर में अपना बहरी जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। एक बयान में फ्रांस की फौज ने कहा है कि उसका तैयारा बरदार जहाज चार्ल्स डे गाल एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जिसके साथ इटली और डच का जंगी जहाज भी है, जुनूबी बहर अहमर की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस और बरतानिया कई हफ्तों से एक तजवीज पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद यह है कि एक बार सूरत हाल मुस्तहकम होने या तनाज़ हल होने की सूरत में आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों के महफूज तौर से गुजरने के लिए राह हमवार की जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में कमांडरों की दूसरी मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दो रोजा कॉन्फ्रेंस का मौजू है नए शोबों में फौजी सलाहियत ने अहमियत इख्तियार कर ली है, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने के मौके पर हो रही है। वजारत दिफा ने कहा है कि ये कॉन्फ्रेंस साइबर खला और इदराकी जंग के उभरते हुए शोबों में दरपेश चैलेंजों का जायजा लेने और एक मजबूत मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग और फैसला कुन बरतरी रखने वाली फोर्स की सलाहियतों की तरक्की के लिए लाए अमल फराहम करेगी। दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी के फराइज अंजाम देगी, जिसमें 35 से ज्यादा मुल्कों के खिलाड़ियों के हिस्सा लेने का इम्कान है। इस चैंपियनशिप का अहतमाम दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया गया है। चैंपियनशिप 27 जुलाई से 2 अगस्त तक मुनाकिद होगी। दिल्ली की

0: सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, कीनिया, जमैका और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के मुल्कों के टेबल टेनिस खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं अब्दुल मालिक।
1: शुक्रिया कोनेन। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने वियतनाम के सदर तोलाम के भारत दौरे से मुतालिक खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। बकौल रोजनामा इनकलाब, भारत और वियतनाम ने नायाब मादनियात, दिफा, काबिल तजदीद तवानाई और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत 12 अहम शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए। रोजनामा प्रताप की एक खबर के मुताबिक साइंस और सेहत के शोबों के लिए भारत और जापान ने कई अहम मुआहदे किए। इसी अखबार ने भारत और अलजजायर के दरमियान दिफाई तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक होने की भी खबर दी है।
0: आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत आज पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर का पहला साल मुकम्मल होने का जश्न मना रहा है। बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह दीगर अहम शख्सियात के साथ पटना में हलफबरदारी तकरीब में शिरकत करेंगे। केरलम में नौ मुंतखब कांग्रेस अरकान असेंबली आज अपना लीडर मुंतखब करने के लिए तिरुवनंतपुरम में मुलाकात करेंगे। मगरबी बंगाल में बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी के करीबी मुआविन को रियासत के शिमाली 24 परगना जिले में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। अमरीका और ईरान मगरबी एशिया में जंग के खात्मे की गरज से एक समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। फ्रांस ने अपना हुरमुज गुजरगाह को महफूज बनाने के मकसद से एक मुमकिन मिशन के हिस्से के तौर पर अपने तैयारा बरदार जंगी जहाज को बहर अहमर में तैनात कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद जावेद अली खान का गायन राग जौनपुरी। तबले पर संगत की है अकबर लतीफ खान ने और हारमोनियम पर जमीर अहमद ने साथ दिया है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर गंगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आपने सुना उस्ताद जावेद अली खान द्वारा गायन राग जौनपुरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: आज जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा समाज के, देश के और व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहे हैं, वहीं एक बड़ी चुनौती उभर रही है विद्यार्थियों के लिए, जब वो अपने भविष्य को निर्माण करने के लिए, उसमें स्थायित्व के लिए एक कैरियर के रूप में किसी विषय का चुनाव करते हैं, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पर्याप्त डिग्री, आवश्यक डिग्री के बावजूद लोग बेरोजगार हैं, युवा बेरोजगार हैं। क्या कारण हो सकते हैं उसके? क्या रोजगार की कमी है या निपुणता की कमी है, या उन्होंने अपनी निपुणता के अनुसार सही विषयों का चुनाव नहीं किया है? इस सब को दूर किया जा सकता है अगर एक वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो, उसको उनको सही समय पर सही जानकारी देने वाले मिले या वो उन लोगों तक पहुँचे। कैरियर काउंसलिंग का मार्गदर्शन में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और खास करके रोजगार प्राप्त करने में किस तरह एक सही कैरियर काउंसलर आपको मार्ग दिखा सकता है, उसका महत्व किस तरह से बढ़ जाता है विषयों के चुनाव करने में, और उस समय लोगों को क्या उपाय करना चाहिए, उनके माता पिता को भी, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं मीनाक्षी व्यास जी। मीनाक्षी व्यास जी एक अनुभवी शिक्षा विशेषज्ञ है और उनकी अपनी विशेषज्ञता है, लंबा अनुभव है खास करके मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग में, और ये R&R एजुकेशन फाउंडेशन नई दिल्ली के निदेशक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। मीनाक्षी व्यास जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
4: बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया और बातचीत करने के लिए मुझे सक्षम समझा गया। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: सबसे पहले हम बात करते हैं कि शैक्षणिक उत्कृष्टता तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात होती है व्यक्तित्व का विकास। क्योंकि शैक्षणिक उत्कृष्टता के बावजूद बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो व्यक्तित्व के विकास के अभाव में अपने आप को समाज में स्थापित नहीं कर पाते हैं, उचित रोजगार नहीं ले पाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं शिक्षा और कैरियर काउंसलिंग के क्षेत्र की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि इसमें विज्ञान, वैज्ञानिक समझ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस तरह से उनके लिए लाभकारी हो सकता है?
4: देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगी कि करियर काउंसलिंग का मतलब यही नहीं है कि स्टूडेंट को उनको गाइड करना कि हाँ जी आप ये करियर चूज कर सकते हैं, बल्कि इसका ये मतलब है कि हम स्टूडेंट्स को वो डायरेक्शन या एक वो काउंसलिंग दे सकें जो उनके आगे जाके भविष्य के लिए एक कारगर साबित हो, मतलब उनको एक अच्छा रोजगार मिल सके, जो ये समझ सके कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है, उनके अंदर क्या कौशल है, और ऐसे कौन से कौशल उनको डेवलप करना चाहिए जो आगे जाके उनको एक अच्छा रोजगार दिला सके। तो करियर काउंसलिंग का मतलब है स्टूडेंट्स को उनकी रुचि और उनकी काबिलियत के हिसाब से एक सही करियर चूज करने में गाइड करना। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शन है जो काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो काउंसलिंग से स्टूडेंट्स को ये समझ में आता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने की बजाय हम स्टूडेंट्स को ये समझाते हैं कि उनके अंदर क्या काबिलियत है, और उस काबिलियत को पूरा करने के लिए हम एक जो गैप है एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में, उसको हम एक स्ट्रक्चर काउंसलिंग के जरिए भरते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर के प्रति एक क्लियर विजन और एक क्लियर दिशा मिल सके।
3: ये तो अच्छी बात है कि आप जो है युवाओं को सही समय में मार्गदर्शन करती हैं, लेकिन एक तो है कैरियर काउंसलिंग और उसका अपना महत्व है खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है कि विद्यार्थियों को सही कैरियर चुनने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? और जब आप किसी विद्यार्थी को एसेस करते हैं, उसकी क्षमताओं की या उसकी रुचि को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या तरीके अपनाती हैं?
4: इसके लिए हम कुछ वैज्ञानिक तरीके और तकनीकी ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स के हम साइकोमेट्रिक असेसमेंट और उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को समझने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं और उनसे ये असेस करते हैं कि उनमें क्या क्षमता है। सपोज कोई स्टूडेंट है जो वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो बजाय इसके कि हम उसको किसी कॉम्पिटिशन या एक मैथमेटिक्स के करियर से जोड़े, उनको इंजीनियरिंग और आईटी का करियर गाइड करें, इससे बेहतर है कि उसको हम एक लिबरल स्टडीज की तरफ गाइड करें। तो हम अपने साइंटिफिक तरीकों से उनकी काबिलियत को पहचानते हैं और एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के जरिए उनको पहचानते हैं और असेस करते हैं, एनालाइज करके फिर उनको एक राइट डायरेक्शन देते हैं।
3: तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट है क्या, इसको कैसे आप परफॉर्म कराते हैं?
4: सर, साइकोमेट्रिक टेस्ट किसी भी आप इंस्टीट्यूट में या किसी भी एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी होता है और आप 1-to-1 भी काउंसलिंग के जरिए कर सकते हैं, जिसमें हमें ये पता चलता है कि स्टूडेंट जो है वो कितना सक्षम है मैथमेटिक्स में, कितना सक्षम है इंग्लिश में, कितना सक्षम है क्रिटिकल थिंकिंग में और आपके एप्टीट्यूड्स में। लाइक जो भी हम एक क्रिटिकल थिंकिंग वाला, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो भी तथ्य यूज करते हैं, तो उसके जरिए हमें उसके पूरे एक पर्सनैलिटी को समझने की क्षमता मिल सकती है या जानकारी पूरी मिल सकती है।
3: अब जब हम बात करते हैं करियर काउंसलिंग की, तो आपको क्या लगता है कि इसमें स्किल डेवलपमेंट इसका महत्व कितना होता है, खास करके जब आज के डिजिटल और प्रतिस्पर्धी युग में विद्यार्थियों को आना है, चुनौतियों का सामना करना है, तो उनको किन किन कौशलों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए?
4: देखिए, स्किल डेवलपमेंट करियर काउंसलिंग में एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, क्योंकि इससे स्टूडेंट को जॉब मार्केट की डिमांड के हिसाब से जरूरी स्किल समझने की क्षमता मिलती है। इन स्किल्स को डेवलप करने से कैंडिडेट जो है या जो स्टूडेंट है वो बहुत कॉम्पिटिटिव बन जाता है और उसे मार्केट में अच्छी जॉब मिलने की या अच्छी रोजगार मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से स्किल है जिनसे उनको एक अच्छा रोजगार मिल सके, उसके लिए मैं ये बताना चाहूंगी कि कौन कौन से स्किल उनको अपने में डेवलप करने चाहिए जिससे उनको एक अच्छा रोजगार और एक अच्छी जॉब मार्केट में एक वैल्यू मिल सके। तो वो स्किल है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कि आपका वर्बल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, अडैप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये ऐसे स्किल हैं जो आजकल के एम्प्लॉयर्स अपने कैंडिडेट्स में चाहते हैं कि ऐसे स्किल वाले कैंडिडेट मिले जो उनके आगे जाके उनके काम में बढ़ोतरी कर सके। तो ऐसे स्किल आजकल के युवाओं को और आजकल के स्टूडेंट्स को अपने में डेवलप जरूर करने चाहिए।
3: तो जब आप क्रिटिकल थिंकिंग आपने कहा ना, तो क्रिटिकल थिंकिंग से क्या तात्पर्य है, उसको उदाहरण से आप कैसे समझाएंगे?
4: क्रिटिकल थिंकिंग इन द सेंस कि आप अगर किसी एक सिचुएशन में हैं और आपको उस सिचुएशन से निकलना है, तो उसके लिए सबसे पहली एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी सिचुएशन जो आप उस सिचुएशन से निकले कर रहे, तो सबसे पहले उसके लिए आपको धैर्य को अपने साथ में रखना है। दूसरा, उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है उसके बारे में एकदम से एक क्विक रिस्पॉन्स के जरिए आप उस क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।
3: तो क्या कोई ऐसी सफलता की कहानी है कि मान लीजिए किसी ने इस तरह से काउंसलिंग के बाद कुछ इस तरह से उसके अंदर इस तरह डेवलप हुआ हो और आपको लगा हो अपने अनुभव के दौरान कि उस बच्चे का इतना प्रोग्रेस है, उन बच्चों का हुआ है?
4: हाँ, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं जिनको हमारी काउंसलिंग के जरिए बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है और आगे जाके उन्होंने अपने एक सही करियर को चुना है। बिकॉज आजकल के छात्र क्या करते हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होता है, वो ये देखते हैं कि हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं, तो उस पीयर प्रेशर और अपने जितने भी आप ये सोचें जो उनके अभिभावक हैं, जो हम कहते हैं पेरेंट्स हैं, उनकी इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि स्टूडेंट्स को ये नहीं समझ में आता कि उनको क्या करियर चूज करना चाहिए। तो क्या करते हैं वो, तो ये उनको बता देते हैं कि ठीक है, आपने इंजीनियरिंग

0: करनी है, आपके इतने मार्क्स हैं, आप इस कॉलेज में जाइए, यहाँ पे आपको यहाँ सफलता मिल जाएगी। बट कभी आपने बच्चे से समझा है या उससे पूछा कि वो क्या करना चाह रहा है? अगर उसको लग रहा है कि वो एक करियर काउंसलिंग के जरिए एक अच्छे करियर को चुनने जा रहा है और वो उसके अकॉर्डिंगली उसके लिए फिट नहीं है, तो हमारी काउंसलिंग के थ्रू वो अपने आप को समझ पाता है, ये जान पाता है कि मुझे इंजीनियरिंग क्षेत्र में नहीं जाना, मुझे किसी और क्षेत्र में जाना है। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जो हमारी काउंसलिंग के थ्रू काफी सफलता पा चुके हैं और वो अपने आप को समझ चुके हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और जब वो हमारे बारे में एक फीडबैक रखते हैं तो हमें उस बारे में बहुत अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता है, खुशी मिलती है कि आज हमने किसी स्टूडेंट को अगर गाइड किया, काउंसिल किया, तो वो हमारी काउंसलिंग के थ्रू एक अपनी अच्छी जो भी उनके स्किल या कौशल है उसके हिसाब से एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सका।
1: जब हम आजकल बात देखते हैं कि जो स्टेम का फील्ड जो है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ जो है, इसका फील्ड बहुत बड़ा हो रहा है और जिस तरह से तकनीकी का विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण किया जा रहा है अकेडमिक संस्थानों के साथ, औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ, तो रोजगार के अवसर भी बहुत उसमें मिल रहे हैं। तो जो बच्चे एक रिसोर्स के रूप में स्टेम के फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरह से उनको अवसर दिखा करके प्रोत्साहित कर सकते हैं या करते हैं?
0: यस, अब स्टेम की फील्ड में जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए हम कई साइंटिफिक रिसोर्सेज को रिकमेंड करते हैं जो उनको एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF और ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स BLS। ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए इन स्टेम्स की फील्ड में वो एक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट का डेटा देते हैं। तो इसके अलावा हम स्टूडेंट्स को और भी बहुत सारे तकनीकी साधनों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको कहते हैं कि हम इंटर्नशिप्स करिए, साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करिए, वर्कशॉप्स करिए और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसे सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करिए जहां पर उन फील्ड के बारे में अपॉर्चुनिटीज मिल सके।
1: अब तो ये तो हो गया स्टेम के, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की बात। इसके परे जो अन्य विषय हैं, खास करके आजकल प्रबंधन का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है, BBA MBA की पढ़ाई बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, तो MBA में भी फिर उसकी अलग अलग ब्रांच हो जाती है, कोई HR लेता है, कोई मार्केटिंग लेता है, कोई फाइनेंस लेता है, तो ऐसे बच्चों के लिए करियर अपॉर्चुनिटीज किस तरह से आप दिखाते हैं कि अगर कोई साइंस के लिए फिट नहीं है, उसका रुझान नहीं है, या आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपको लगता है कि इसके लिए ये फील्ड ठीक नहीं रहेगा, ये फील्ड ठीक रहेगा, तो उसमें किस किस तरह से आप उनको प्रोत्साहित कर सकती हैं या एक बच्चा को जानकारी मिल सकती है कि इस क्षेत्र में क्या अवसर हैं, आप संभावनाएं हैं?
0: देखिए, अगर कोई बच्चा या कोई छात्र साइंस के फील्ड के अंदर सक्षम नहीं है तो हम उसको ये गाइड कर सकते हैं कि आप MBA के क्षेत्र के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट्स के अंदर MBA की डिग्री बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब साइंस करने के बाद भी हमने ये देखा है कि आज BTech का बच्चा भी MBA कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको उस फील्ड के अंदर सफलता नहीं मिल रही। तो MBA के जरिए बच्चा एक अपने उस लेवल पे पहुंच सकता है जहां पे हम उसको कह सकते हैं मैनेजीरियल लेवल, जहां पे वो ये देख सकता है कि आप किस सीनियर लेवल पे जाके उस फील्ड को चुन सकते हैं जो उनका आगे जाके लाभकारी सिद्ध हो, ताकि वो उनको नए नए आगे प्रमोशन और अपने करियर ग्रोथ के बारे में जानकारी मिल सके।
1: बहुत अच्छा। अंत में बात करेंगे कि आपके अपने अनुभव से कि इस क्षेत्र में आपने जो करियर काउंसलिंग का है, तो आप जो युवाओं के विकास के संदर्भ में किस तरह के विजन या एक क्या कहते हैं कि एक योजना को आप रिकमेंड करेंगी उनके लिए भी और खास करके नीति निर्माताओं के लिए भी, क्योंकि आपका एक करियर काउंसलिंग में एक लंबा अनुभव रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में जो बच्चे करियर काउंसलिंग में आते हैं और अपने पर्याप्त सफलता नहीं ले पाते हैं, तो क्या जो नीति बनाने वाले लोग हैं, विकास करने वाले लोग हैं या जो अवसर प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं, उसको भी किसी तरह की रूपरेखा बनानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए, को ट्रेन करने के लिए, कोई वर्कशाला आयोजित करने के लिए?
0: बिल्कुल सही, ऐसे बहुत सारे संस्थान बनने चाहिए जहाँ पे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनको करियर काउंसलिंग का अवसर नहीं मिलता, तो ऐसे संस्थान जरूर बनने चाहिए जहाँ पे हर वर्ग के लोग आके काउंसलिंग ले सकें, ताकि जो करियर काउंसलिंग हम लोग दे रहे हैं वो हर प्रांत में, हर क्षेत्र में पहुंच सके और बच्चों का सही मार्गदर्शन हो सके, ताकि उनको ये समझ में आ सके कि हमको सिर्फ ट्रेंड को फॉलो नहीं करना है, हमें अपनी रुचियों और अपने स्किल्स के बेसिस पर आगे जाके भविष्य में एक सही करियर को चुनना है। तो आजकल के युवा लोगों के लिए मैं यही बताना चाहूंगी कि अपने आप में विश्वास रखें, बिलीव इन योर सेल्फ, हेल्प द सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, ये सब बहुत जरूरी है आजकल के छात्रों के लिए, क्योंकि इसके बिना वो कहीं पे भी आगे बढ़ने की अगर कोशिश भी करेंगे तो वो नहीं बढ़ पाएंगे जब तक वो अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे।
1: निश्चित रूप से, इसीलिए आप जो है अपने पे विश्वास, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। मीनाक्षी व्यास जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो

0: में आई, आपने मार्गदर्शन, करियर काउंसलिंग, रोजगार के अवसर और खास करके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं और युवाओं को किस तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, किस तरह से आप उनकी निपुणता की जांच करती है एक राय देने से पहले कि किस क्षेत्र में उनको अध्ययन करना चाहिए, साइकोमेट्रिक टेस्ट आदि के बारे में आपने बातें बताई। इन सब जानकारियों के लिए, आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका कार्यक्रम का ये अंक संपन्न होता है। वाचन स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। नमस्कार।
3: उद्योग पत्रिका।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
4: ये आकाशवाणी

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये 2 दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के

घर आंगन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन FM गोल्ड चैनल यानी FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी। कार्यक्रम घर आंगन के साथ आज मैं हूं आपकी रेडियो सखी राधा पाठक। स्वीकार करिए मेरा नमस्कार और सबसे पहले आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सुंदर सुविचार के साथ। शिक्षक वो नहीं जो छात्रों के दिमाग में तथ्यों को बस डाल दे, बल्कि शिक्षक तो वो है जो उन्हें आगामी चुनौतियों के लिए तैयार करे।

0: आशा भोसले, मुकेश और सिमी ग्रेवाल की आवाजों में ये गीत आपने मेरा नाम जोकर फिल्म से सुना। जी हाँ, फिल्म का नाम था मेरा नाम जोकर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और आज हम बात करेंगे एक बेहद जरूरी विषय पर, HPV वैक्सीन, जो हमारी बेटियों को सर्वाइकल कैंसर से बचा सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिन्नी दुआ, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, HPV क्या है?
1: HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है। एक ये आम वायरस है जो आगे चलकर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का एक प्रमुख कारण बन सकता है। अब हम सोचें कि सर्विक्स किसे कहते हैं। सर्विक्स यानी गर्भाशय या बच्चेदानी के निचले हिस्से को हम सर्विक्स कहते हैं, और इसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं।
0: किशोरियों के लिए वैक्सीन क्यों जरूरी है डॉक्टर साहब?
1: किशोरियों के लिए वैक्सीन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसका देखा गया है, जो HPV वैक्सीन है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे बेस्ट बेनिफिट जो आता है वो जितनी जल्दी शुरू हो सके। दैट इंडिकेट्स कि हमारा 9 से 15 ईयर्स का जो होता है कोहर्ट, उसमें सबसे ज़्यादा ये वैक्सीन 100% एफिकेसी पाई गई है।
0: मतलब वायरस मिलने से पहले ही अगर इसका बचाव कर लिया जाए तो सबसे बेस्ट है।
1: यस बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो दिल्ली में क्या सुविधा है और ये वैक्सीन कहाँ उपलब्ध है?
1: आज की डेट में दिल्ली में एक कैंपेन मोड के द्वारा हर सरकारी अस्पताल और डिस्पेंसरीज में ये मुफ्त में दिया जा रहा है। एक एज ग्रुप जो हमारी जिसमें वैक्सीन लग रही है वो है 14 इयर्स से 15 इयर्स प्लस 3 मंथ्स की किशोरियों को वैक्सीन हर सरकारी केंद्र में, अस्पताल और डिस्पेंसरीज में मिल रहा है।
0: 2026 में जैसा कि आपने बताया, सरकार ने 14 से 15 साल तक की लड़कियों के लिए बड़े स्तर पर फ्री वैक्सीनेशन अभियान चलाया है। प्राइवेट में हजारों रुपए में मिलने वाली ये HPV वैक्सीन सरकार के कार्यक्रमों द्वारा सरकारी फैसिलिटीज यानी आयुष्मान आरोग्य मंत्री जो हैं, डिस्पेंसरीज हैं, अस्पतालों में, इसमें मुफ्त मिल रही है। हाँ, इसलिए लोगों को इसका लाभ उठाना चाहिए।
1: बिल्कुल 100% लाभ उठाना चाहिए। और जितनी ज्यादा सभी, मैं तो यही कहूंगी सारी किशोरियां जो भी इस एज ग्रुप में है उनको हमें वैक्सीन करना है, लगवानी है 30 मई के अंदर अंदर।
0: कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है या जरूरी नहीं है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बिल्कुल 100% सुरक्षित है ये। और एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगी, ये नई वैक्सीन नहीं है, ये हमारी 2006 से ये वैक्सीन है और दुनिया भर में लग रही है। एक मैक्सिमम बहुत करोड़ों लोगों ने इस वैक्सीन का लाभ अपना लिया है। मेरा यही सुझाव रहेगा सारे माता पिता किशोरियों के, एक बार अपने निकटतम डिस्पेंसरीज में आए और जो भी उनकी जो इश्यूज है वो डॉक्टर से सलाह ले।
0: यानी ये गलत फहमी है कि HPV वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, ये बल्कि ये तो विश्व भर में प्रमाणित है। दिल्ली में कम जागरूकता और अफवाहों के कारण कई लड़कियां वैक्सीन नहीं लगवा पा रही हैं। हमें इसी सोच को बदलना होगा। डॉक्टर साहब, श्रोताओं के लिए कोई संदेश?
1: ये एक छोटा कदम है लेकिन भविष्य में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार।
0: तो अभी हमारे साथ ही डॉक्टर बिन्नी दुआ, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, जो बात कर रही थी HPV वैक्सीन पर। दोस्तों याद रखिए, रोकथाम ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपनी बेटियों का भविष्य सुरक्षित करें, HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। और यहाँ हम एक गीत सुन लेते हैं।

रोजा फिल्म में आपने सुना मिनमिने को, और आज से घर आंगन कार्यक्रम में हम लेकर आ रहे हैं 90 वर्षों का आकाशवाणी का सफर। जी हाँ, जो ये रेडियो या आकाशवाणी हर पल हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारा मनोरंजन करता है, हमें नित्य नई खबरें देता है, समाचार सुनवाता है। तो क्या है आकाशवाणी, और हमारे हर पल का जो ये साथी बन गया है ना आकाशवाणी, 8 जून 1936 को भारतीय

राजकीय प्रसारण सेवा का नाम ऑल इंडिया रेडियो किया गया था और सन 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कर दिया गया। एक ऐसी विरासत जो आज तक लोगों के दिलों में बसी हुई है। आकाशवाणी देश की 98% आबादी तक पहुंच रखता है। वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज पहुंचाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्श पर खरा उतरते हुए आकाशवाणी हमारे विशाल देश के विभिन्न हिस्सों में 24 घंटे 7 दिन प्रमुख भाषाओं में समाचार और मनोरंजन उपलब्ध करवाता है। इसी तरह से तो 90 सालों से हमारा हम सफर है ये आकाशवाणी। ये आकाशवाणी यूं ही फलती फूलती और बढ़ती रहे। घर आंगन कार्यक्रम में मैं और मेरे साथी लगातार इस विषय पर आपको नई जानकारियां देते रहेंगे। हम तो बस यही कहेंगे कि आकाशवाणी सदा हमारे साथ है।

मेरा साया इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। सुखो या दुख हर पल का साथी है आकाशवाणी, और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर भारत का लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती यानी आकाशवाणी 8 मई 2026 को एक मैराथन वॉकथन आयोजित कर रहा है। इसके लिए आकाशवाणी रंग भवन के सामने औपचारिक रूप से स्टार्ट पॉइंट और फिनिश पॉइंट भी बनाए जाएंगे। प्रतिभागी इस संबंध में 7 मई 2026 को शाम 4 से 6 बजे तक कक्ष 247 सेकेंड फ्लोर, जी हां, कमरा नंबर 247 सेकेंड फ्लोर आकाशवाणी भवन से संपर्क कर सकते हैं। और इन 90 सालों के सफर में आकाशवाणी भारतीय सिनेमा के समानांतर ही महिलाओं के सशक्तिकरण में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। और हमारा जो ये कार्यक्रम है घर आंगन, चूंकि महिलाओं का खास कार्यक्रम है और आज हम बात करेंगे फिल्मों में महिला चरित्रों और पात्रों की। हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार आचार्य शुक्ल का कहना है, साहित्य समाज का दर्पण है। यकीनन साहित्य समाज का दर्पण होता भी है, परंतु उसी के साथ साथ जब हम समाज के एक अन्य पहलू सिनेमा पर बहस करते हैं तो सिनेमा को भी समाज और साहित्य का दर्पण माना जाना चाहिए। चूंकि सिनेमा का मूल उद्देश्य जनता का मनोरंजन करना होता है, इसलिए साहित्यिक कृतियों के जरिए दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फिल्में एक ऐसा माध्यम है जो जन जन से जुड़ा हुआ है। इसलिए फिल्मकारों ने साहित्यिक कृतियों को फिल्माने में थोड़ी छूट भी ली है। लेकिन इस पक्ष का एक दूसरा पहलू ये भी है कि फिल्मों के माध्यम से साहित्यिक रचनाओं को बड़े पैमाने पर पहचान भी मिलती रही है। भारतीय सिनेमा के एक शताब्दी पूर्ण हो जाने के बाद भी इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। अब भारतीय सिनेमा के आरंभिक दशकों में जो फिल्में बनती थी उनमें भारतीय संस्कृति की महक रची बसी होती थी और विभिन्न आयामों से भारतीयता को उभारा जाता था। हमारी भारतीय संस्कृति मानव जाति के विकास का उच्चतम स्तर कही जा सकती है, तभी इसकी परिधि में वसुधैव कुटुंबकम के सारे सूत्र आ जाते हैं, जिसका परिणाम हमें समाज में और सिनेमा में महिलाओं की समस्याओं को रखते हुए कुछ फिल्मों के नाम ये में याद आ जाते हैं जिसमें महिलाओं की समस्याएं भी दिखाई गई हैं, और बहुत सारी फिल्में ऐसी भी हैं जहां महिलाओं की शक्ति भी दिखाई गई है। एक समय था जब हमारे पास देविका रानी थी और पहली भारतीय महिला फिल्म निर्देशक फातिमा बेगम थी जिन्होंने बुलबुले परिस्तान बनाई थी। दुर्गा खोटे थी जो एक असाधारण फैमिली से आई थी और उस समय उन्होंने ये फैसला लिया था जब फिल्मों में आना अच्छा नहीं माना जाता था। मदरनिया में नरगिस ने जो भूमिका निभाई वो संभवतः भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित महिला किरदार है। वहीं मुगले आजम में दूसरी यादगार भूमिका जो निभाई वो मधुबाला ने निभाई। 1950 के दशक की बात करें तो सारा दशक नूतन, वैजयंती माला, वहीदा रहमान जैसी सशक्त अभिनय वाली अभिनेत्रियों से पर्दे पर समाया रहा। उन्हें बेजोड़ साथ मिलता गया लता जी के स्वरों का। अब नरगिस अभिनीत मदर इंडिया, नरगिस के अभिनय और लता मंगेशकर की गीतों के अलावा उसमें कुछ याद आपको नहीं रहेगा। सिर्फ नरगिस ही नरगिस नजर आएंगे, आपको याद रह जाएंगे लता मंगेशकर के गीत जो आकाशवाणी हमेशा

अच्छा बजाता है। कुल मिलाकर हिंदी फिल्मों की दृष्टि में 1950 का जो दशक था वो संगीत में रहा, और ये भी कह सकते हैं कि पूर्णतः स्त्री प्रधान रहा। नूतन अभिनीत कोई भी फिल्म उठा लीजिए उस टाइम की, क्या आप उसे भूल पाते हैं? सीमा, सुजाता, बंदिनी, नूतन के बेमिसाल अभिनय को प्रस्तुत करती हुई ये इन भूमिकाओं को नूतन ने अमर बना दिया।

0: बंदिनी फिल्म का ये गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज में सुना।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी

आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

बात कर रहे थे फिल्मों में महिला चरित्रों की, महिला पात्रों की। अब पुराने दशक में महिलाओं के जो चरित्र दिखाए जाते थे वो बहुत मजबूत दिखाए जाते थे, और मैंने कहा ना कि फिर सिनेमा में भारतीय संस्कृति की झलक होती थी। ये विषय जो है ना, मनोरंजन का नहीं बल्कि समाज के बदलते नजरिए की कहानी भी है। फिल्मों में महिला किरदार कैसे दिखाए जाते हैं ये बहुत हद तक ये तय करता है कि समाज उन्हें कैसे देखता है। शुरुआती दौर में सीमित और रूढ़ छवि हुआ करती थी। पुरानी फिल्मों में महिला पात्र अक्सर कुछ तय दायरों में बंधे होते थे, जैसे त्यागमयी माँ, निरुपराय के जितने भी किरदार हैं वैसे ही हैं, आदर्श पत्नी की, प्रेमिका की जैसी भाभी फिल्म में है, या फिर वैम्प नकारात्मक छवि हेलन या बिंदु जैसी। उनका मुख्य काम होता था कहानी के नायक की कहानी को आगे बढ़ाना, और खुद की स्वतंत्र पहचान उनकी कम ही दिखती थी। अब थोड़ा बदलाव का दौर आया, मजबूत पहचान की शुरुआत हुई। धीरे धीरे फिल्मों में महिलाओं को मजबूत और केंद्र में दिखाया जाने लगा, जैसे मदर इंडिया में नरगिस का संघर्षशील किरदार। और देखिए, मदर इंडिया की बात करें तो फिल्म का जो पोस्टर था उसमें नरगिस जो है वो हल को कांधे पर उठाए हुए दिखाई देती हैं। ये बहुत प्रगतिशील पोस्टर था, क्योंकि उस वक्त महिलाओं के लिए ऐसा नहीं सोचा जाता था कि कंधे पर हल लेकर महिला खेत में जा रही है, और यही फिल्म का पोस्टर है। सीता और गीता में हेमा मालिनी का डबल रोल इसी बात की पहचान है। यहां महिलाएं सिर्फ सहायक नहीं बल्कि कहानी की धुरी बननी शुरू हो गई। आराधना फिल्म में आप शर्मिला टैगोर का किरदार देख सकते हैं, और लेकिन आज के दौर की बात करें उसमें विविधता है, महिलाओं का सशक्तिकरण है। आज की फिल्मों में महिला पात्र पहले से ज्यादा रियल और विविध है। जैसे क्वीन फिल्म में आपको कंगना राणावत की आत्मनिर्भरता दिखाई देगी, राजी फिल्म में आज जो आलिया भट्ट है उनमें देशभक्ति और साहस दिखाई देगा, थप्पड़ फिल्म में तापसी पन्नू को आपने देखा उसमें आत्मसम्मान की कहानी है। अब महिलाएं सिर्फ किरदार नहीं बल्कि अपनी कहानी खुद लिखने वाली नायिका बन रही हैं। इसका एक कारण ये भी है कि निर्देशक और निर्माता के तौर पर भी महिलाएं आगे आ रही हैं। फिल्मों ने स्त्री जीवन के पारिवारिक और सामाजिक सवालों को ही नहीं उठाया है बल्कि राजनीतिक सवालों को भी उठाया है। उदाहरण के तौर पर स्त्री जीवन पर केंद्रित कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनका जिक्र लाजमी है, सूरज का सातवां घोड़ा, दामिनी, बैंडिट क्वीन, मम्मो, फायर, सरदारी बेगम, मृत्युदंड, गॉड फादर, क्षमा कीजिए गॉड मदर, हरी भरी, गजगामिनी, अस्तित्व, जुबैदा, क्या कहना, चांदनी बार, जख्म, फिजा। ये सभी फिल्में हैं जिसमें स्त्री जीवन के महत्वपूर्ण ढंग से इन्हें अभिव्यक्त भी किया गया है, और स्त्री जीवन का महत्वपूर्ण जो नजरिया है वो हमें दिखाया गया है। महिलाओं का सशक्तिकरण लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, और ये आज भी समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है। यदि हम मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा की बात करें तो महिलाएं अब सशक्त हुई हैं।

घातक फिल्म में ये गीत आपने कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुना। महिलाओं की बात चल रही है और अब हम बात करेंगे अरुणिमा सिन्हा की। भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी और एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में हेड कांस्टेबल के पद पर 2012 से कार्यरत हैं। 12 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जाते समय बरेली के निकट एक हादसे में अरुणिमा अपना एक पैर गंवा बैठी थी। जी हाँ, इतना बड़ा हादसा हुआ अरुणिमा सिन्हा के साथ जो वॉलीबॉल खिलाड़ी थी और हेड कांस्टेबल के पद पर भी कार्यरत थी। अब उनका एक्सीडेंट हो गया, एक हादसा हो गया, अरुणिमा अपना पैर गंवा बैठी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक पैर गंवा चुकने के बावजूद अरुणिमा ने गजब के जीवन का परिचय देते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह कर एक नया इतिहास रचते हुए ऐसा करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। जी हाँ, इसे कहते हैं जस्वा। ट्रेन दुर्घटना से पूर्व उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य की वॉलीबॉल और फुटबॉल टीमों का प्रतिनिधित्व भी किया था। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के भारत भारती संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस दिव्यांग महिला को सोनपुर रत्न अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। सन 2016 में अरुणिमा सिन्हा को अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार से अंबेडकर नगर महोत्सव समिति की तरफ से नवाजा भी गया। अरुणिमा सिन्हा एक भारतीय पर्वतारोही और खिलाड़ी हैं। वो भारत की पहली और दुनिया की सबसे पहली ऐसी दिव्यांग महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट, किलीमंजारो, माउंट एल्ब्रस, माउंट कैसियस्को, एकॉनकागुआ, डेनाली और विंसन मैसिफ की चोटियों को फतह किया है। वो 7 बार भारतीय वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। उनका लक्ष्य हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है और वहां भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। 2014 तक वो 6 चोटियों को फतह कर चुकी थी। एशिया में एवरेस्ट, अफ्रीका में किलीमंजारो और बाकी नाम भी हमने आपको बताए ही हैं। 1 जनवरी 2019 को अंटार्कटिका में माउंट विंसन की उन्होंने अंतिम चढ़ाई पूरी की। इसे अरुणिमा सिन्हा के महान जज्बे को हम सलाम करते हैं।

जी हाँ, ये गीत आपने सुना, हावड़ा ब्रिज फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में। आज सारी बातें हम घर आंगन प्रोग्राम में महिलाओं की कर रहे हैं। अब इतने सारे आपने फिल्में देखी हैं, इतने सारे आपने प्रोग्राम सुने हैं, अब आकाशवाणी 90 सालों से लगातार आपके साथ है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, तो इसमें ये भी तो है ना कि आप ही तो हमें बताइए ना कि आकाशवाणी कैसे 90 सालों से आपके साथ है, और हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगता है। हम आपको अपना ईमेल आईडी बता देते हैं, fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com। इस पर आप बता सकते हैं कि किस तरह से आकाशवाणी 90 सालों से आपके साथ है और कैसे आपका मनोरंजन कर रहा है, और हमारा ये कार्यक्रम घर आंगन आपको कैसा लग रहा है। अब हम बात करेंगे महिला सशक्तिकरण में नारीवादी दृष्टिकोण की। जी हाँ, कहते हैं ना, महिलाएं महिलाओं की दुश्मन है, और ये क्यों कहा जाता है, और ऐसा हर जगह पॉसिबल भी नहीं है। महिलाएं महिलाओं का साथ भी देती हैं, लेकिन ये है ना कि अब एक कमजोर कड़ी आपने पकड़ ली तो आप बोल देंगे। अब महिला सशक्तिकरण का अर्थ महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत निर्णय लेने में सक्षम बनाना है, ताकि वो पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त कर सकें। शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता और पितृसत्तात्मक भेदभाव को चुनौती देकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक प्रक्रिया है। सरकारें सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड जैसी योजनाएं इसे बढ़ावा दे रही हैं। जी हाँ, एक पिंक स्मार्ट कार्ड है जो बसों के लिए है। बसें बिल्कुल मुफ्त हैं दिल्ली में। आप एक किसी भी डिपो में जाकर सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड बनवा सकते हैं और बसों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। अब महिला सशक्तिकरण में सबसे मेन चीज क्या है? सबसे पहले तो महिलाओं को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। हर महिला शिक्षित होनी चाहिए। ज्ञान और आत्मविश्वास के माध्यम से जो निर्णय लिए जाते हैं, उनसे क्षमता में, आपकी एबिलिटी में विकास होता है। आर्थिक स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। रोजगार दिए जाए ताकि वित्तीय निर्भरता भी महिलाओं को प्राप्त हो। सामाजिक समानता यानी भेदभाव को समाप्त करना, और पुरुषों के समान सम्मान और समान वेतन भी महिलाओं को मिलना चाहिए, और मिल भी रहा है। महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। निर्णय लेने की शक्ति, परिवार और समाज में अपने जीवन से संबंधित फैसले महिलाओं को खुद लेने होंगे, उसका अधिकार उनके पास होना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि ये सही सशक्तिकरण है। आर्थिक भागीदारी होनी चाहिए। देश की लगभग 50% आबादी की आर्थिक गतिविधियों में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। अब इसका लाभ क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। महिलाओं के सशक्त होने से गरीबों का उन्मूलन होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा, समग्र आर्थिक विकास में तेजी आएगी, बेहतर जीवन स्तर होगा, क्योंकि महिलाएं अगर स्वस्थ होंगी, शिक्षित होंगी, तो परिवार भी स्वस्थ और शिक्षित रहेगा, पोषण स्तर में सुधार होगा, और कंपनियों में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। महिला सशक्तिकरण केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक विकसित राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है ये। अब इसमें नारीवादी दृष्टिकोण कहां से आता है? आप कहेंगे कि मैंने नारीवादी दृष्टिकोण की बात की थी, इस बारे में तो बात कर लें। महिलाओं में सशक्तिकरण की भावना जगाने के लिए नारीवादी दृष्टिकोण दो तरीकों से काम करता है। एक तो चेतना जगाना, महिला सहयोग के साथ साथ परस्पर विरोधी विचारों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए नारीवादी अक्सर चेतना जगाने के तरीके इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं को पता होना चाहिए कि उनका सशक्तिकरण कैसे होगा। महिलाएं न केवल अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बारे में जान पाती हैं, बल्कि ये भी समझ पाती हैं कि ये संघर्ष राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों से भी जुड़े हुए हैं। सहयोग के साथ साथ परस्पर विरोधी विचारों पर भी खुलकर चर्चा करनी होगी, यानी महिलाओं को चर्चा एक मंच तैयार करना होगा। आपस में बात करना बहुत जरूरी है। सेल्फ मोबिलाइजेशन यानी स्वयं संगठित होने के लिए भी प्रेरित होना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से महिला प्रतिभागियों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि उनमें समस्या समाधान का के कौशल विकसित होते हैं, इसलिए समाज के बारे में ज्ञान और दृष्टिकोण का एक नया संसार देखने को मिलता है, और इसलिए महिलाओं को आगे आना होगा। अपना सशक्तिकरण महिलाओं को स्वयं करना होगा, इस बारे में ध्यान देना होगा कि कैसे वो आगे बढ़ सकती हैं और राष्ट्र निर्माण में सहयोग कर सकती हैं।

0: प्रोफेसर फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और अब कार्यक्रम घर आंगन से राधा पाठक को दें इजाज़त। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे घर का आंगन कार्यक्रम को लगातार सुनते रहिए। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।
1: घर आंगन
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा, आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवीके प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कल भी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरु मावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय के राजनीति के आगे नहीं झुके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.5% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक बढ़कर 78,304 पर था।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। समय हो चुका है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। मैं आज आपकी दोस्त अर्चना गोयल, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी बारात में जो यादों से सजी है। जी हाँ, बात हो रही है फिल्म यादों की बारात की। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1973 में और इस फिल्म का निर्देशन किया था नासिर हुसैन ने। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस फिल्म के एक खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों, इस फिल्म का लेखन किया था सलीम जावेद साहब ने, और धर्मेंद्र, जीनत अमान, तारिक शाह, नीतू सिंह, विजय अरोड़ा, अजीत और आमिर खान जैसे कलाकार फिल्म में शामिल थे। ये फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रभावशाली रही। ये पहली मसाला फिल्म थी जिसमें एक्शन, नाट्य, रोमांस, संगीत, अपराध और थ्रिलर शैलियों के तत्व शामिल थे। इसमें कई कलाकारों के करियर को भी बढ़ावा मिला। आपको बता दें कि जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए ये पहली व्यावसायिक सफल हिंदी फिल्म रही और दोनों 1970 के दशक की प्रमुख अभिनेत्री बनी। संगीतकार आरडी वर्मन द्वारा रचित अपने गीतों के लिए भी फिल्म को याद किया जाता है, खासकर रफी साहब और आशा भोसले की आवाज का गीत चुरा लिया है विशेष रूप से याद किया जाता है।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और हमारी आज की फिल्म है 1973 में रिलीज फिल्म यादों की बारात। आपके साथ मैं अर्चना गोयल।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और अब बारी है आपके ईमेल शामिल करने की, और ये मैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। भेजने वाले हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गाव्या मल्होत्रा। ये लिखते हैं कि जल है तो जीवन है। तो वाकई सुनील जी, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और ये लिख रहे हैं कि यादों की बारात के गीत और कहानी आपकी जवानी सुने, बहुत खूबसूरत फिल्म थी, और आपकी शानदार पेशकश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। और ये मैसेज मिला है नाहर कोहरा ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू का। आप हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, चौधरीवास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, और आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा, हीरामणि वर्मा दंतरेगी भाटापारा से, और ये हैं महेश गेट नाभा जिला पटियाला पंजाब से, सोमदत्त, कैरव, ज्योतिरानी, गुरमंत कौर और मनु, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक, अंकु, राघव गुप्ता, और पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपक दीपा रिमझिम गुप्ता। जलालाबाद बेस से ये हैं सुरेश गगनेजा और पूनम गगनेजा, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगल, दलजीत सिंह, राजदीप कुरनूर, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। तो आप सबके मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं कहानी की तरफ, और अब आपको फिल्म से जुड़े दिलचस्प किस्से बता दें। आपको बता दें कि चुरा लिया है तुमने गाने में जो गिटार की धुन है, वो इतनी लोकप्रिय हुई थी कि आज भी हर रोमांटिक प्लेलिस्ट का हिस्सा है। ये फिल्म लॉस्ट एंड फाउंड थीम पर आधारित थी, और बाद में इसी तरह की कई फिल्में बनी, और ये एक ट्रेंड सेटर फिल्म साबित हुई। और ख़ास बात ये कि फिल्म में आमिर खान को बतौर चाइल्ड पहली बार स्क्रीन पर दिखाया गया था।

धर्मेंद्र, विजय यानी विजय अरोड़ा और रतन यानी तारिक शाह। एक दिन उनके पिता के जन्मदिन पर उनकी माँ तीनों को यादों की बारात ये गाना सिखाती है। एक दिन उनके पिता शाकाल और उसके गुंडों को टाका डालते हुए देख लेते हैं। उनके पुलिस में जाने से पहले ही गुंडे उन तीनों के माता पिता की हत्या कर देते हैं। शंकर और विजय ये देख लेते हैं और भाग जाते हैं। रास्ते में दोनों भाई आपस में बिछुड़ जाते हैं। शंकर को अपने माता पिता की हत्या का आज तक घबराहट है। वो अपने दोस्त उस्मान के साथ शहर में अपराध करने लगता है। विजय को एक अमीर आदमी गोद ले लेते हैं और वो सुनीता यानी जीनत अमान से प्यार करने लगता है। रतन जिसे उसके घर में काम करने वाली पालती है और उसका नाम मोंटू रख देती है। मोंटू अपनी पहचान के साथ अपना बैंड बनाता है और होटल में काम करने लगता है। वहां गायिका नीतू सिंह से प्यार करने लगता है। तीनों भाई कई बार एक दूसरे से मिलते हैं पर पहचान नहीं पाते। मोंटू और विजय जब गाने के कारण मिलते हैं तो शंकर को भी पता चल जाता है कि वो दोनों उनके भाई हैं, लेकिन शंकर को उसका बॉस पकड़ लेता है जो उनके माता पिता का असली कातिल है। जब शंकर को असलियत पता चलती है तो शाकाल को ट्रेन की पटरी पर मरने के लिए छोड़ देता है और तीनों भाई फिर आपस में मिल जाते हैं और इस तरह सुखद अंत होता है।

अब आपकी मैसेज, और ये मैसेज हमें मिला है संदीप मकर, ज्योति मकर का, पिंगा वाला चौक गौरिया जालंधर से। और दूसरा मैसेज है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का, दंतरेकी से, नलेश्वर नगर, नरवेल महाराष्ट्र से, पी एस नवाडकर, निर्मला और विशाल, आप हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ से। और ये मैसेज हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार का, इशाक मोहम्मद का ये मैसेज हमें मिला है छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, आप हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगा नगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, आप हैं मन शर्मा, इनका नाम नहीं समझ में आ रहा है, आप हैं मंटू शर्मा, सुशीला शर्मा, लीलाधर शर्मा, राजू अग्रवाल, चौधरी वास से। तो आप सब ने अपने मैसेज सुन लिए, और अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर। दोस्तों, ये फिल्म हमें सिखाती है कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, पर वक्त के साथ कहीं खो जाते हैं, और फिर एक दिन कोई धुन, कोई याद उन्हें वापस ले आती है। तो अब वक्त है उस गाने का जो हर दिल को छू जाता है।

दोस्तों, उम्मीद है आपको यादों भरा सफर पसंद आया होगा। ऐसे ही फिल्मों के किस्से, यादें और संगीत लेकर हम फिर आएंगे। तब तक अपनी यादों को संभाल कर रखिए, क्योंकि वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं आपकी दोस्त अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार, आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन

हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। 1:40 होने को है अब आप समाचार।

0: सरबराह जोसेफ विजय ने लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए 48 घंटे से कम वक्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। रूस ने 9 मई को अगर यूक्रेन ने विक्ट्री डे तकरीबात में रखना अंदाजे की कोशिश की तो कीव पर जवाबी हमलों की वार्निंग दी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क दहशतगर्दी को मात देने और इसके ढांचे को तहस नहस करने के अपने अज्म पर साबित कदम है। उन्होंने ये बात सोशल मीडिया पोस्ट पर ऑपरेशन सिंदूर का एक साल पूरा होने के मौके पर कही। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि भारत की मुसल्ला फौजों ने ऑपरेशन के दौरान अपनी शुजात, बहादुरी और ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा किया है जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जनाब मोदी ने कहा कि पहलगाम में मासूम भारतीयों पर हमला करने की जुर्रत करने वालों को भारत की फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। वजीर आजम ने कहा कि पूरा मुल्क मुसल्ला फौज को उनकी शुजात के लिए सलाम करता है। हमारे नामा निगार का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी मुसल्ला अफवाज की पेशावराना सलाहियत और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतरीन तालमेल का सबूत है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पिछले साल आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया था। दहशतगर्दाना हमले में 26 बेकसूर लोगों की जानें तलफ हो गई थीं। ऑपरेशन सिंदूर कंट्रोल लाइन के उस पार और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और उसे तबाह करने के लिए शुरू किया गया था। ऑपरेशन के तहत भारत की मुसल्ला अफवाज ने बेहतरीन तालमेल के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के इलाके में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और 100 से ज्यादा दहशतगर्दों, उन्हें तरबियत देने वालों, उनके आकाओं और उनके साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया। बेशतर दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता थे। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा और वह जंगबंदी के लिए मजबूर हो गया। इस ऑपरेशन को भारत की दिफाई तारीख में कौमी अज़्म मुसम्मम, फौज की शानदार कारकर्दगी और फौज की तीनों शाखों के दरमियान बेहतरीन तालमेल के तौर पर याद रखा जाएगा। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी से निमटने के भारत के पुख्ता अज़्म और उन सभी कुव्वतों के खिलाफ एक फैसला कुन कार्रवाई करार दिया जिनसे मुल्क के इख्तदार आला और शहरियों के तहफ्फुज़ को खतरा लाहिक है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि पहलगाम के वहशियाना हमले का मुंह तोड़ और माकूल जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को आज एक बरस मुकम्मल हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसल्ला अफवाज की बहादुरी के एजाज में सोशल मीडिया पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर को तब्दील किया है। उन्होंने हमवतनों पर भी जोर दिया है कि वो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी अफवाज के एहतराम और उनकी कामयाबी के लिए सोशल मीडिया के अपने सभी हैंडल पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर तब्दील करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुसल्ला अफवाज ने गैर मामूली शुजात, मखसूस कार्रवाई की अपनी सलाहियत और पुख्ता अज़्म का मुजाहिरा किया था। भारतीय फौज ने आज ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने के मौके पर एक वीडियो शेयर किया है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की शह वाली दहशतगर्दी का एक मजबूत और मखसूस जवाब था। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में भारतीय फौज ने मुल्क के इस मुंहतोड़ जवाब को उजागर किया।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। विजय की गवर्नर से ये दूसरी मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि गवर्नर ने ही विजय को मुलाकात के लिए बुलाया था। इस बात का इम्कान है कि इस मुलाकात के बाद गवर्नर केरलम के लिए रवाना हो जाएंगे। विजय ने कल भी गवर्नर से मुलाकात की थी और उन्हें अपनी पार्टी के 9 मुंतखब एमएलए की फेहरिस्त नीज कांग्रेस की तरफ से हिमायत से मुतालिक मकतूब सौंपा था। वी सी के रहनुमा तिरुमवलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज होने वाली लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग के बाद ये तय करेगी कि आया विजय की पार्टी की हिमायत की जाए या नहीं। उनकी पार्टी से 2 MLAs हैं। लेफ्ट जमातों ने गवर्नर से अपील की है कि सबसे बड़ी पार्टी TVK को हुकूमत साजी का मौका दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अक्सरियत असेंबली में साबित की जा सकती है। तमिलनाडु में DMK के सरबराह MK स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी अवाम के दिए गए इस फैसले की इज्जत करती है कि एक नई पार्टी रियासत में बरसरे इख्तदार आए। उन्होंने मजीद कहा कि पार्टी दोबारा इंतखाब कराना या कोई आईनी बहरान नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई हुकूमत की तश्कील की राह में नहीं आएगी। जनाब स्टालिन ने इन अफवाहों को मुस्तरद किया कि नई हुकूमत साजी के लिए DMK और AIADMK के दरमियान बातचीत चल रही है। पुदुचेरी के वजीर आला एन रंगासामी ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाशनाथन को अपना इस्तीफा सौंपा, जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाके में नई हुकूमत तश्कील देने की राह हमवार हो गई है। वजीर आला ने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाती तौर पर इस्तीफा सौंपा। काबिले जिक्र है कि असेंबली इंतखाबात मुकम्मल होने के पेश नजर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुदुचेरी की 15वीं कानून साज असेंबली को तहलील किए जाने के अहकाम जारी किए थे। बिहार में वजीर आला सम्राट चौधरी ने आज अपनी हुकूमत में तौसी की है। मुख्तलिफ रहनुमाओं को काबीना में बतौर वुजरा हलफ दिलाया गया। इनमें भगवान सिंह कुशवाहा, अरुण शंकर प्रसाद, मदन साहनी, संतोष कुमार सुमन, रामकृपाल यादव, नितिन मिश्रा, दामोदर यादव, संजय सिंह और अशोक चौधरी शामिल हैं। पटना के गांधी मैदान में हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर आजम नरेन्द्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन के अलावा मुख्तलिफ सीनियर रहनुमा और काबीना के मेंबर शामिल हुए। वजीर आजम मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दी है कि आबनाए हुरमुज के रास्ते जहाजों को निकालने की खातिर मंसूबाबंद बहरी कार्रवाई को रोक दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से इस मिशन में अमरीकी तैयारे के इस्तेमाल की इजाजत से इनकार के बाद ऐसा हुआ है। मकामी मीडिया की खबरों में कहा गया है कि सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक इतवार के रोज ट्रंप की जानिब से प्रोजेक्ट फ्रीडम के ऐलान से हैरान हो गए थे। खबरों में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने सऊदी वलीअहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, लेकिन वो मुआहिदा करने में नाकाम रहे। रूस ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन ने मई की 9 तारीख को यौम फतह की तकरीबात में रखना डालने की कोशिश की तो कीव पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। रूस की वजारत दिफा ने सिफारती मिशनों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों को मशविरा दिया है कि वो एहतियात के तौर पर कीव से अपने अमले और शहरियों को निकाल लें। यौम फतह रूस की सबसे ज्यादा अहम कौमी तातीलात में से एक है और ये दूसरी जंग अजीम में सोवियत यूनियन की कामयाबी के दिन के तौर पर मनाया जाता है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ईकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इससे कबल कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को जीत के लिए 236 रन का निशाना दिया था, लेकिन वो 202 रन ही बना पाई। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने पर उसकी सताइश की है। उन्होंने दहशतगर्दी से निमटने और उसकी इयानत करने वाले इको निज़ाम को नीस्त तो नाबूद करने के भारत के अज़्म का इयादा किया। तमिलनाडु और केरलम में हुकूमत तश्कील देने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। TVK के सरबराह जोसेफ विजय ने लोकभवन में गवर्नर से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त का हवाला देते हुए 48 घंटे से कम वक्त के बाद प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला सनराइजर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
4: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails first anniversary of Operation Sindoor, reaffirms India's commitment to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary expands his cabinet, 32.

0: नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
0: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत के 65% से अधिक रक्षा उपकरण स्वदेशी रूप से निर्मित हैं। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
3: विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ।

0: भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
2: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा

0: राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बैनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
2: आज से 1 दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं और ये वक्त है आपके अपने कार्यक्रम एक ही कलाकार का। कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी होस्ट और दोस्त अर्चना गोयल। आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनके शब्दों में देशभक्ति की आग भी है और

प्यार भी, नरमाहट भी। आज की महफिल में हम बात करेंगे महान संगीतकार, गीतकार और देशभक्त प्रेम धवन की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मन्ना डे की आवाज़ में फिल्म काबुलीवाला के गीत से।

प्रेम धवन का जन्म 13 जून 1923 को अंबाला में हुआ और लाहौर में स्नातक की शिक्षा पूरी की। आपने हिंदी फिल्मों के लिए कई मशहूर गीत लिखे। प्रेम धवन न केवल गीतकार थे, वरन आपने हिंदी फिल्मों के लिए कुछ फिल्मों में संगीत दिया, नृत्य निर्देशन किया और अभिनय तक किया। उन्होंने पंडित रविशंकर से संगीत एवं पंडित उदय शंकर से नृत्य की शिक्षा ली। भारत सरकार ने प्रेम धवन को 1970 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रेम धवन ने अपने करियर की शुरुआत 1946 में लाहौर में ख्वाजा खुर्शीद अनवर गीतकार के असिस्टेंट के तौर पर फिल्म कल आज और कल के लिए की। बाद में वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए मुंबई चले गए, जहां उन्होंने रविशंकर के संग शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने फिल्म धरती के लाल से गीतकार के रूप में शुरुआत की। इसके बाद लगातार सन 1989 तक उन्होंने अनगिनत गीत लिखे, जिनमें आराम, शोला और शबनम, काबुलीवाला, एक फूल दो माली, पूरब और पश्चिम शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कुछ फिल्मों में संगीत भी दिया, जिसमें शामिल है मनोज कुमार द्वारा निर्मित फिल्म शहीद का संगीत।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं प्रेम धवन। आपके साथ मैं अर्चना गोयल। दोस्तों, प्रेम धवन ने अपने करियर में गीतकार और संगीतकार के अलावा दो फिल्मों में अभिनय भी किया, जिसमें 1950 में आई फिल्म लाजवाब और 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इसके साथ साथ उन्होंने 7 फिल्मों में कोरियोग्राफर के तौर पर काम भी किया, हालांकि उसमें प्रेम धवन को ज्यादा सफलता नहीं मिली। भारत सरकार ने 1970 में उनको सिविलियंस अवार्ड पद्मश्री प्रदान किया। 1971 में नानक दुखिया सब संसार के गीतों के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट लिरिक्स के लिए मिला और 1980 के दशक में उनका करियर कोई खास कार्य नहीं कर पाया, सिवाय 1989 में आई फिल्म अपूर्वा सगोदरार गल के। उनकी मृत्यु 7 मई 2001 को 77 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से हो गई।

जोकर, गीत, पूरब और पश्चिम, पवित्र पापी, एक फूल दो माली जैसी फिल्में शामिल थी। संगीतकार के रूप में उनकी फिल्में रहीं, भारत के शहीद, आधी रात के बाद, किसान और भगवान, पवित्र पापी, शहीद, मेरा देश मेरा धर्म जैसी फिल्में रहीं। कोरियोग्राफर के तौर पर फिल्में थीं वक्त, धूल का फूल, दो फूल, सहारा, नया दौर, वचन, दो बीघा जमीन, आरजू, शीश महल और गूंज उठी शहनाई।

गीतकार के तौर पर उनकी फिल्में रहीं वचन, तांगे वाली, जागते रहो, हीरा मोती, जबा काबली वाला, माँ बेटा, शबनम, शहीद, 10 लाख, मेरा नाम

0: दोस्तों, प्रेम धवन का मानना था कि गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का माध्यम है। उनके गीतों में एक विचार होता था, एक संदेश होता था। उनकी यही सोच उन्हें बाकी गीतकारों से अलग बनाती है। दोस्तों, प्रेम धवन जैसे कलाकार सिर्फ गाने नहीं लिखते, वो इतिहास लिखते हैं, भावनाएं लिखते हैं। उनकी कलम से निकले शब्द आज भी हमें जोड़ते हैं और प्रेरित करते हैं।
1: आसरा चाहता हूँ।

0: उलपट जिए तेरी उलपट के मारे।
1: इसी के साथ आज की महफिल को यहीं संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई आवाज के साथ। तब तक के लिए अर्चना गोयल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए श्रोताओं, करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: कोमल वचन और विनम्र व्यवहार ही मनुष्य को महान बनाते हैं।
0: इस सुंदर विचार के लिए हम उमंग कार्यक्रम की ओर से आपका आभार प्रकट करते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश।
2: ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
0: और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सबका बहुत बहुत हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके अद्भुत और रहस्यमय संसार की।
0: जी,
2: भारतीय शास्त्रों में समुद्र को अनंत ज्ञान का प्रतीक और जीवनदाता माना गया है। गीता, रामायण, पुराणों और वेदों में भी इसे विशेष महत्व दिया गया है। समुद्र मंथन की घटना से हम सब परिचित तो हैं ही, तो अजीत जी, आज हम समुद्र की किस विशेषता पर चर्चा करने जा रहे हैं?
0: विमलेश जी, अभी अभी आपने कहा समुद्र को शास्त्रों में जीवनदाता कहा गया है।
2: जी,
0: है
2: ना? बिल्कुल।
0: आज हम चर्चा करेंगे कि इसे जीवनदाता कहने का कारण क्या है। तो चलिए आपसे करते हैं शुरुआत।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है, वरना हम समुद्र के महत्व को समझ ही नहीं पाएंगे। यदि पूछा जाए कि हमें जीने के लिए प्राण वायु या ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो सबका उत्तर होगा पेड़ पौधों से। ये ठीक है, लेकिन सच ये है कि समुद्र लगभग 60-70% तक ऑक्सीजन पैदा करता है।
0: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। जी हाँ श्रोताओ, यदि प्रतिशत को मान लें तो कहा जा सकता है कि समुद्र पेड़ पौधों से भी अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए तो इसे जीवनदाता भी कहा जाता है।
2: अजीत जी, मैंने पढ़ा है कि समुद्रों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे सांस लेने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। लेकिन ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि समुद्र ऑक्सीजन कैसे पैदा करता है।
0: जी विमलेश जी, समुद्र में फाइटोप्लैंकटन होते हैं। जरा श्रोताओं को जानकारी तो दे दें कि फाइटोप्लैंकटन होते क्या है।
2: श्रोताओं, फाइटोप्लैंकटन दरअसल बहुत ही सूक्ष्म और छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो समुद्र के जल में तैरते रहते हैं। इनमें बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण वे सूर्य की गर्मी से फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन छोड़ते हैं।
0: जी, एक रोचक बात और जान देते हैं। फाइटोप्लैंकटन नाम ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द से आया है।
2: जी,
0: फाइटो का अर्थ है पौधा और प्लैंकटन का अर्थ है भटकने वाला या तैरने वाला।
2: जी,
0: ये पौधे समुद्र में यहाँ वहाँ तैरते रहते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओ, इनकी संख्या अरबों खरबों में है। ये धरती के सबसे पुराने ऑक्सीजन उत्पादकों में से एक हैं। अजीत जी, श्रोताओं की ओर से एक और प्रश्न मेरे मन में है, वो ये है कि इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन हवा में कैसे आती है, यानी हमें कैसे मिलती है?
0: जी देखिए, समुद्र में बनी ऑक्सीजन दो तरह से फैलती है। तो पहली बात है, ये ऑक्सीजन पानी में घुल जाती है। इसी ऑक्सीजन से मछलियां और सारे समुद्री जीव सांस लेते हैं। लेकिन दूसरी एक और बात है।
2: दूसरी बात है, इनके द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन लहरों और हवा के संपर्क में आकर हमारे पर्यावरण में पहुंचती है।
0: जी, और इतना ही नहीं, समुद्री शैवाल भी बहुत बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करते हैं।
2: लेकिन अब एक खतरा है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रोताओं, एक बहुत गंभीर बात आपको बता दें, समुद्रों में हर दिन हजारों टन प्लास्टिक और कारखानों का कचरा नदियों द्वारा लाया जाता है। समुद्री तटों पर पर्यटक भी कचरा फेंक देते हैं। शहरों का कचरा जहाजों द्वारा समुद्रों में लाकर फेंक दिया जाता है।
0: और श्रोताओं, इससे होता यह है कि समुद्री जीवों के जीवन पर संकट आता है।
2: जी,
0: और समुद्र द्वारा ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता भी प्रभावित होती है।
2: श्रोताओं, क्या आपको पता है कि समुद्रों में कुछ जगहों पर प्लास्टिक इकट्ठा होकर बड़े बड़े ढेर बना लेता है, जिसे प्लास्टिक या गार्बेज आइलैंड कहते हैं। ये तैरते हुए कचरों के द्वीप हैं। तो आइए अपने जीवनदाता समुद्र का सम्मान करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें और कचरा इधर उधर न फेंकें। शास्त्रों में समुद्र को देवता भी माना जाता है।
0: श्रोताओं, समुद्र का विश्व सभ्यता में बहुत बड़ा योगदान है। दुनिया का 80% व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। यह जलवायु, ऋतुओं और पर्यावरण को भी नियंत्रित करता है। ऐसा भी कहते हैं कि जीवन की उत्पत्ति भी समुद्र से ही हुई है।
2: जी,
0: आइए आज अपने जीवनदाता समुद्र को धन्यवाद दें, हम उसकी रक्षा करें।
2: तो समाप्त करते हैं आज की चर्चा। श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। अब सुनिए।

0: आज का प्रश्न,
1: आज का प्रश्न है, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई दो कारण बताइए।
1: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, माला की चांदी की पायल।
1: इस कार्यक्रम में एक प्यारी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, जिसे पायल पहनकर घर में घूमना बहुत अच्छा लगता है। वो पायल पहनकर घूमती है और बहुत सी मजेदार गतिविधियां भी करती है। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित सुंदर नाट्य प्रस्तुति है, माला की चांदी की पायल।
2: माला बिल्ली को डराती है। वो अपनी नानी को डराती है।
3: अरे माला तू।
2: वो अपने छोटे भाई को डराती। वो डाकिये को डराती।
4: बहन जी, डाकिया।
2: उसकी टोपी भी हवा में उछल गई। एक दिन माला की मां ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी।
3: माला, यह तुम्हारे लिए है।
2: माला ने जल्दी से डिब्बी खोली, जिसमें उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। उन्हें पहनकर वो पूरे घर में घूमने लगी। छोटे छोटे घुंघरू झनकते। अब माला जहां भी जाती सब जानते। उसकी आवाज से बिल्ली को पता लग गया कि माला आ रही है। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। माला की हेज से पहले नानी पलट गई। इस बार वो डरी नहीं, क्योंकि उन्हें माला के आने का पायल की आवाज से पहले ही पता चल गया था। माला की थप्प से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। माला की भौ से पहले डाकिया निकल गया। माला की छिक छिक छम की पायल की आवाज सुनकर डाकिये को पहले ही पता चल गया कि माला आ रही है। अब माला किसी को डरा नहीं पाती। तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। वो बहुत खुश है।
1: तो बच्चों, अभी आपने सुनी डराने की अलग अलग अभिव्यक्तियां। अब आपके सोचने के लिए कुछ बातें। विभिन्न भावों की अलग अलग अभिव्यक्ति होती है, जैसे हंसने की, रोने की इत्यादि। तो आप भी अपने मित्रों के साथ प्रयास करके देखिए कि आप कितने प्रकार से हंस सकते हैं।

0: कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर और ममता मलकानी, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना तथा निर्देशन एवं निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।
1: और अब सुनते हैं भारतीय शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत की श्रृंखला राग रस बरसे का एक और कार्यक्रम। शीर्षक है राग गौड़ मल्हार।
0: इस कार्यक्रम में राग गौड़ मल्हार के बारे में विस्तृत विवरण दिया गया है और विशेष रूप से बताया गया है कि इसे कब गाया जाता है, इसकी स्वर मालिका क्या है और इसमें कौन कौन से कोमल और तीव्र स्वर लगते हैं।

राग गौड़ मल्हार। राग गौड़ मल्हार की उत्पत्ति खमाज थाट से हुई है। इस राग में दोनों निषाद अर्थात कोमल नी और शुद्ध नी प्रयोग किए जाते हैं तथा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके आरोह और अवरोह में सात सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति संपूर्ण संपूर्ण है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है, संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है एवं ये वर्षा ऋतु में विशेष रूप से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वर मालिका। अब इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना सुनिए। बोल हैं उमड़ घुमड़ कर आते बादल। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई

अभी आपने सुनी राग गौड़ मल्हार की स्वरमालिका, साथ ही सुनी इस

0: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं कि ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
1: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ। अलर्ट हूँ मैं, चल चलूँ।

0: तो सुनिए आपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: और अब सुनते हैं कार्यक्रम साथी की सहायता।
2: इस कार्यक्रम में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए ये संदेश दिया गया है कि मित्र वही है जो जरूरत के समय काम आए और हर संभव सहायता करे। ये कार्यक्रम एक लोक कथा पर आधारित है।

0: एक बालक था, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। एक दिन वो अपने पिताजी के पास गया और बोला,
1: पिताजी मुझे 5-7 रुपए दे दीजिए।

0: पिताजी ने कहा
1: 5-7 रुपए। तुम ये रुपए किस लिए मांग रहे हो?
0: बालक बोला,
2: मुझे इन रुपयों की जरूरत है।

0: पिताजी ने बालक को 5 रुपए दे दिए, लेकिन वो जानना चाहते थे कि बालक रुपए किस काम में खर्च करेगा। वो चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। बालक सीधा अपने साथी के घर गया। वो उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी। वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और अपने साथी को दे दी। साथी को इन पुस्तकों की बहुत जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। पिताजी ने बालक को बुलाया। वे प्यार से बोले,
1: बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। साथियों की सहायता करना बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम्हें पुस्तकें खरीदते देख लिया था।
0: इस बालक का नाम था चितरंजन दास। चितरंजन दास ने देश की बहुत सेवा की। लोग इन्हें देश बंधु चितरंजन दास कहने लगे।

0: जी, अभी आपने सुना कार्यक्रम साथी की सहायता।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
0: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप एनसीईआरटी के स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब समय हुआ है हमारे अगले कार्यक्रम का, जिसका नाम है उर्दू मजलिस।
4: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इस प्रोग्राम के तहत हम अदबी, समाजी और सियासी मौजूआत के साथ साथ अखलाकी मौजूआत पर माहिरीन के ख्यालात से आपको आगाह कराते हैं। मौजूदा दौर बहुत पुरआशोब है। दुनिया के हर हिस्से में तशद्दुद और बेरारवी के साथ साथ कत्ल गारतगरी आम हो रही है। ऐसे में सहाफियों, अदीबों और शायरों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और समाजी जिम्मेदारियां कैसी होनी चाहिए, इन्हीं सवालों के साथ आज इस मुबाहिसे का मौजू है, क्या अदब ज़रूरी है। जी हाँ सामईन, अदब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि अदब हमारी ज़िंदगी पे

0: असरअंदाज होता है, नज़र आता है। हम फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसमें अदब नज़र आता है। हम शायरी सुनते हैं, शायरी करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ बुनते हैं, हर जगह हमें अदब नज़र आता है। और इन अदब का हमारे ऊपर यानी समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है, समाज अदब से क्या अख़ज़ करता है और अदब समाज से क्या लेता है, इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है क्या अदब ज़रूरी है। तो लीजिए समाप्त कीजिए इस मौजू पर ये कारामद गुफ्तगू। हमारे शुरका हैं जनाब कुर्बान अली, जनाब मासूम मुरादाबादी, प्रोफेसर अनवर पाशा और निज़ामत के फ़रज़ अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर शफी अयूब। तो लीजिए समाप्त कीजिए।
1: हिंदी के महान साहित्यकार कथाकार थे राम वृक्ष बेनीपुरी। एक बहुत ही मशहूर निबंध है आपका, ललित निबंध गेहूं और गुलाब। उर्दू के मशहूर अफसाना नगार, कलम निगार और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास का मशहूर अफसाना है गेहूं और गुलाब। उसी नाम से उनका अफसानवी मजमुआ भी है गेहूं और गुलाब। इस मौजू पे बहुत बहस होती रही है कि जिंदगी के लिए गेहूं जरूरी है या गुलाब जरूरी है। इस बहस से ये सवाल भी निकला और ये सवाल इसी में पोशीदा है कि हमारी ज़िंदगी के लिए अदब की ज़रूरत है भी या नहीं। अदब, जिसे हिंदी में साहित्य और अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, उसे हमें क्या मिलता है? अदब क्यों ज़रूरी? इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में इल्म अदब की दुनिया से, सहाफत की दुनिया से तीन अहम शख्सियात मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से साबिक चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मुल्क के मुमताज़ नक्काद और दानिश्वर प्रोफेसर अनवर पाशा, सहाफत की दुनिया में गुज़िश्ता 35-40 बरसों से अपनी मनफरद शनाख्त कायम करने वाले, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यकसां तौर पे मकबूल जनाब कुर्बान अली, उर्दू में सहाफत के मौजू पे कई अहम किताबों के मुसन्निफ, मशहूर कालम निगार, कई अहम उर्दू अखबारात के मुदीर जनाब मासूम मुरादाबादी के साथ मैं शफी अयूब आज गुफ्तगू करते हैं अदब क्यों ज़रूरी। सबसे पहले शुरू करते हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में उस्ताद जो अदब पढ़ाते हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब से, ये जो बुनियादी सवाल है कि क्या अदब ज़रूरी है भी या नहीं।
2: जी शुक्रिया। पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि गेहूं और गुलाब जिस कंटेक्स्ट में ये कहानी लिखी गई थी और जो आपने ख्वाजा अहमद अब्बास का जिक्र किया और आपने राम वृक्ष बेनीपुरी का जिक्र किया, उनके हवाले आपने दिए, उनके मजमून का हवाला आपने दिया, वो कंटेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है।
1: जी
2: ये वो तनाजुर है जब अदब और ज़िंदगी के हवाले से मबाहिस से उस तरह से चल रहे थे। जाहिर है कि उस वक्त अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी की बहस थी, उस कंटेक्स्ट में
1: जी
2: वो कहानी भी लिखी गई थी और ये राम वृक्ष बेनीपुरी का जो मज़मून है जिसका जिक्र आपने किया वो लिखा गया था। लेकिन ये अदब ज़रूरी क्यों,
1: जी
2: ये उससे कहीं बड़ा सवाल है
1: जी
2: अदब और ज़िंदगी। यहाँ यह है कि अदब एज सच, अदब का जो वजूद है और ख़ास तौर से आज के तनाजुर में ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है,
1: जी
2: साइंस के फ़रोग का जिस तरह का दौर है, आईटी में जिस तरह की तब्दीलियां, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी उसमें जिस तरह से रोज़ बरोज़ इनकलाबात जिस तरह से आ रहे हैं, उस तनाजुर में ये महसूस किया जा रहा है कि क्या अदब इस तरह के अहद में जब जिंदगी बिल्कुल मशीनी बन के रह गई है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी जिसकी तरफ हर आदमी दौड़ रहा है, एक रेस है उसमें हर आदमी दौड़ रहा है, आदमी मशीन बना हुआ है और अदब एक तरह से साइडलाइन होता जा रहा है। साहित्य लिटरेचर
1: जी
2: अब सबसे आखिरी तरजीह में से है, अदब अब किसी की पहली तरजीह नहीं है। अगर आप दानिशगाहों को देखें
1: जी
2: तो दानिशगाहों में जो डिसिप्लिन्स, जो उलूम, जो
1: जी
2: मजामीन वहाँ ऑफर किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनमें आप देखेंगे कि अदब सबसे पिछले पायदान पर एक तरह से है, सबसे बिल्कुल लिस्ट प्रायोरिटीज में अदब है, सबसे कम तरीन जो तरजीहात में से है अदब। जिसको कहीं कुछ नहीं मिला वो
1: जी
2: अदब की तरफ आ गया, लिटरेचर की तरफ आ गया, लैंग्वेज की तरफ आ गया। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो अदब लगता है कि अब हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है, या अदब का पढ़ना पढ़ाना, अदब तख्लीक करना गोया एक तरह से कार्य लाहासिल है, बेकार है। इससे जो संजीदा लोग हैं, संजीदा जहन रखने वाले, माशरे को, इंसानी ज़िंदगी और कायनात को संजीदगी से देखने वाले जो अफराद हैं, वो उनके लिए बहुत ही एक तशवीश का एक सबब है, क्योंकि अदब हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि अदब अगर ना हो, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा न बने, अदब क्या है, माशरे का तर्जुमान होता है,
1: जी
2: फ़र्द का भी तर्जुमान है, माशरे का भी तर्जुमान
1: जी
2: है। तो उस तरह से अगर आप देखें कि ज़िंदगी में अदब की हमारी अहमियत क्या है, यानी अदब हम क्यों पढ़ते हैं, अदब हम क्यों लिखते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं।

0: कि एक फर्द अपने अफकार, अपने तस्वुरात, अपने ख्यालात का इजहार करता है।
1: जी
0: बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि अदब तो एक फर्द का इजहार है, एक फर्द वाहिद का इजहार है, एक फनकार का इजहार है, लेकिन वो इस पहलू को भूल जाते हैं कि वो फनकार इसी माशरे का हिस्सा होता है
1: जी
0: और उस माशरे के वो तमाम जो लवाजमात हैं उससे उसका एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो उन सब के साथ वो जी रहा होता है। तो वो जब इजहार करता है अपना,
1: जी
0: वो जाती इजहार ही क्यों ना हो, अपनी जात के हवाले से ही वो इजहार क्यों नहीं कर रहा हो, वो इजहार एक तरह से इज्तमाही इजहार का मजहर भी बन जाता है क्योंकि वो उसी माशरे में जी रहा होता है। तो जब हम अदब की बात करते हैं, अदब के वजूद की बात करते हैं, अदब की अहमियत की बात करते हैं, अदब क्यों की बात करते हैं, तो जो जहन में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर हम अदब जब पढ़ते हैं
1: जी
0: तो हम क्या हासिल करते हैं, एक कारी के तौर पर, एक सामे के तौर पर और एक तख्लीकार के तौर पर भी। तख्लीकार जब लिखता है तो उसके सामने भी कुछ मकासिद होते हैं,
1: जी
0: वो किसी मकसद को पेश नजर रख करके अदब तख्लीक करता है। बेमकसद अदब नहीं हो सकता, ऐसी कोई लकीर दरमियान में नहीं खींची जा सकती कि ये अदब मकसदी अदब है और ये जो है गैर मकसदी अदब है। बगैर मकसद के अदब की तख्लीक मुमकिन ही नहीं है। तो हर अदीब एक मकसद के तहत अदब तख्लीक करता है। कारी भी जब उसे पढ़ता है तो उसका भी एक मकसद होता
1: जी
0: है। हर तरह के अदब को हर कारी नहीं पढ़ सकता,
1: जी
0: हर कारी का अपना अलग ज़ौक होता है। बाज़ कारी ऐसे होते हैं जिनकी दिलचस्पी सिर्फ शायरी में, अदब के सिर्फ एक पहलू शायरी में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ नावल पढ़ने में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ अफसाना पढ़ने में है। तो जाहिर है कि उसी तरह से और भी दीगर असनाफ की तरफ है। तो ये जो ज़ौक है लोगों का, ये ज़ौक क्या है, इस ज़ौक के तकाजे क्या हैं, अब वो अदब तख्लीक करने का ज़ौक
1: जी
0: हो या अदब पढ़ने का ज़ौक हो, ये हमारी जो फिक्र है, हमारा जो जज्बा है, हमारे जो एहसास हैं, या हमारी जो जमालियाती एक कहने के एक ज़रूरत है। जमालियात इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अंसुर है,
1: जी
0: बहुत अहम अंसुर है। हम एस्थेटिक्स को, जमालियात को अलग रख करके इंसान का तस्वुर नहीं कर सकते। इंसान जमालियात के बगैर जी नहीं सकता। उसकी अपनी जो पसंद और नापसंद है और जो खूबसूरती है दुनिया की, कायनात की, ज़िंदगी की, गिर्दोपेश की, वो उसकी तरफ फितरी तौर पर मायल होता है
1: जी
0: और उस खूबसूरती में इजाफा भी करता है अपनी फिक्र से, अपने एहसास से, अपने जज्बात से। तो अदब को अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर है कि अदब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है और अदब की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि अदब हमारी फिक्र को सैकल करता है,
1: जी
0: हमारे जमाल को सैकल करता है, उसको संवारता है और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर हैसियत वाला इंसान बनने में अदब मदद करता है।
1: कुरबान अली साहब, आप तो सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मुसन्निफ भी हैं, कई अहम किताबें आपने लिखी हैं। प्रोफेसर पाशा जो बात कह रहे हैं कि आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं शायद, और अदब जो है वो बहुत पिछले पायदान पे है, क्या आप भी इतफाक़ रखते हैं? दानिशगाहों के हवाले से आपने इजहार ख्याल किया, आपकी क्या राय है?
2: मैं अनवर पाशा साहब से थोड़ा सा इत्तफाक नहीं करूंगा
1: जी
2: कि चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन हम इसी दौर में ये भी देख रहे हैं कि अदब की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है,
1: जी
2: चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सहाफत हो,
1: जी
2: चाहे वो पार्लियामेंट की डिबेट्स हो,
1: जी
2: चाहे वो किसी हेड ऑफ स्टेट का एड्रेस हो, उसमें भी हम ये देखते हैं आमतौर पे कि शेर व शायरी और अदब का सहारा
1: लिया
2: लिया
1: जाता
2: जाता है।
1: जी
2: और अभी गुज़िश्ता कुछ बरसों में हमने ये देखा कि उर्दू के बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि उर्दू ख़त्म हो चुकी है
1: जी
2: और उसकी कोई कलीदी हैसियत नहीं रह गई है, लेकिन इसी शहर में जब रेख्ता के प्रोग्राम हुए तो लाखों वो लोग जो उर्दू से, उर्दू स्क्रिप्ट से
1: जी
2: नावाकिफ़ थे,
1: जी
2: वो उसमें आए, क्योंकि और उनमें नौजवान, ख़ास करके नॉन
1: हाँ
2: मुस्लिम, उनको ये लगा कि उनकी इजहार मोहब्बत का इससे बेहतर मीडियम शायद कोई और नहीं
1: नहीं हो
2: हो सकता।
1: सकता
2: अभी एक हाल में फिल्म आई, उसमें फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि
1: जी,
2: शाम थी धुआं
1: जहाँ हुस्न
2: धुआं,
1: भी था उदास
2: बस उदास
1: उदास
2: उदास कुछ।
1: धुआं।
2: अब ये देखिए कि उस फिल्म में इस्तेमाल किया गया है इसको और
1: जी
2: कई बार रिपीट किया गया
1: जी जी
2: इस शेर को, और वो बहुत कामयाब फिल्म मानी जा रही है अभी। तो अदब का जो सिलसिला है वो लगता ये है कि हम एक जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं वो बहुत ही
1: जी
2: एक मसनूई सी दुनिया है, लेकिन चूंकि अदब इंसान की रूहानी ज़रूरत है
1: जी
2: तो इसलिए वो कभी शायद ख़त्म हो नहीं पाएगा। उसका तरीका बदल सकता है,
1: जी
2: क्योंकि आप देखें पब्लिकेशन किसी भी ज़बान का लें आप, उसमें अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू और तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें खूब शायरी हो रही है, खूब अदब छापा जा रहा है, खूब बिक रहा है और वो लोगों की रोजी रोटी का बायस भी बन रहा
1: जी
2: है।
1: हाँ जी
2: और आप यहाँ हिंदुस्तान को छोड़ करके पूरी दुनिया में देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं उनको कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में अदब की ज़रूरत महसूस होती है।
1: कुरबान साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि शायद अदब जो है वो काली बदल रहा हो।

0: आपने सियासतदानों का जिक्र किया, मासूम साहब मुझे याद है कि सियासतदानों के हवाले से हमारे एक साबिक वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ये शेर पढ़ा था कि कभी शाख व सब्ज़ा व बर्क पर, कभी गुंचा व गुल व खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक़ है फसले बहार पर। ये शेर मुरादाबाद से आया था, जिगर मुरादाबादी का शेर है और आपका शहर भी मुरादाबाद है, तो कि इसी हवाले से हम अदब के इस बदलते तनाजुर में मासूम मुरादाबादी की राय भी जान लें।
1: देखिए, जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है और उसकी ज़रूरत का ताल्लुक़ है, इसके दो पहलू हैं।
0: जी
1: एक पहलू तो यह है कि आज हम जिस सारिफ समाज में ज़िंदा हैं,
0: जी
1: उसमें हर चीज़ को एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है
0: जी
1: कि जो कुछ तख्लीक हो रहा है वो एक प्रोडक्ट के तौर पर हमारे सामने आता है कि ये सारफियत है और ये
0: जी
1: एक ऐसा समाज है जिसमें सिर्फ पैसा कमाना जो है ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है, जिसका
0: जी
1: जिक्र अभी अनवर पाशा साहब ने भी
0: जी
1: किया। लेकिन अदब जहाँ से तख्लीक होता है, जहाँ से इसके सोते फूटते हैं,
0: जी
1: वो कौन लोग हैं जो अदब तख्लीक करते हैं? वो समाज के वो लोग होते हैं जो बहुत हसास होते हैं,
0: जी
1: जिनकी निगाह बड़ी बारीक भी होती है और जो अपनी सोच का दायरा बहुत वसी रखते हैं। वो महज इसको इस चीज़ से नहीं नापते कि उन्हें कोई फन पारा या शहपारा तख्लीक करने का मुआवजा क्या मिल रहा है।
0: जी
1: खासतौर से हम जिस जबान में काम करते हैं,
0: उससे बेनियाज होकर वो अदब तख्लीक कर रहे
1: तो
0: हैं।
1: आप ये देखिए कि चाहे हमारा क्लासिकल लिटरेचर हो,
0: जी
1: चाहे और दूसरा पिछले ज़माने का, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आज का आज जो अदब तख्लीक हो रहा है, ज़्यादातर हमारे जो लिखने वाले हैं वो अदब तख्लीक करने के बजाय ख़ुद को तख्लीक करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पॉपुलर लिटरेचर है हमारा,
0: जी
1: उसकी मकबूलियत ने जो रिकॉर्ड कायम किए, चाहे वो जासूसी दुनिया हो,
0: जी हाँ
1: चाहे वो दूसरी चीज़ें, लेकिन उसके मुकाबले में आज जब आप देखिए, आपको रिसाला उठा के देखिए, उसमें कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदब के दायरे में आती हैं,
0: जी
1: कोई तख्लीकियत उसमें नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए ज़िंदगी में जो कशाकश है, जो
0: जी
1: पेचीदगी है और जो परेशानियाँ और हंगामा आराइयाँ हैं, इंसान सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िंदगी कशाकश से परेशान है
0: जी
1: और वो ये सोचता है कि इससे कैसे पनाह हासिल की जा सके। एक शख्स है आयज़ुल करनी, अरबी का एक अदीब
0: जी
1: है,
0: जी
1: उसने एक किताब लिखी ला ताहज़नू, ये कुरान का
0: जी
1: एक
0: हाँ
1: है, उसका उर्दू तर्जुमा होता है गम ना करें, वो किताब उर्दू में छपी।
0: जी
1: मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट सेलिंग किताब है इस वक्त, गम ना करें, वो एक
0: जी
1: गतरीफ शहबाज नदवी ने उसका तर्जुमा किया।
0: जी
1: वो ये बताता है अदब के हवालों से, शेर के हवालों से और ज़िंदगी की मुख्तलिफ रवैयों के हवाले से कि इंसान जो सबसे ज़्यादा गम में मुब्तला है, उसकी उसने तरदीद की है कि इंसान को गम नहीं करना चाहिए, और मुख्तलिफ वाकयात बयान किए हैं, और ऐसी गज़ब की उसकी सोच है कि मैंने जब वो किताब पढ़ी
0: जी
1: तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में रंज और गम जो है ये बिल्कुल फजूल चीज़ है, क्योंकि उसके कंट्रोल में कोई चीज़ है नहीं।
0: जी
1: जो कुछ होता है वो कुदरत की तरफ से होता है और कुदरत ही चीज़ों को क्रिएट करती है, वही उनको सॉल्व करती है,
0: वो एक तरह इलाज भी कर रहा है, मुआलिज है आपका
1: इलाज भी
0: अदीब
1: कर
0: जो है
1: रहा
0: वो
1: है
0: मुआलिज है, अदब के जरिए
1: और
0: इलाज भी
1: अदब
0: कर
1: के
0: रहा है।
1: हवालों से ही कर रहा
0: बिल्कुल
1: है।
0: जी हाँ
1: तो ये इसका एक पहलू है। तो हमें इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अदब ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी
0: जरूरी
1: है,
0: है।
1: इस पर
0: गोया कि
1: गौर
0: अब तक
1: करना
0: अपने
1: चाहिए।
0: प्रोफेसर अनवर पाशा से बात की, कुर्बान अली साहब की बात सुनी, मासूम मुरादाबादी साहब की बात सुनी, ऑल इंडिया रेडियो के इस बहस में कि अदब क्यों ज़रूरी। इतनी बात तो वाजह है कि अदब ज़रूरी है, और अगर नई नस्ल में किसी भी वजह से अदब से दूरी हो रही है, या अदब नहीं पढ़ना चाहते हैं, या अदब कम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई सर्वे हमारे पास हो, तो यकीनी तौर पर हमें रागिब करने की भी ज़रूरत है कि नई नस्ल भी अदब पढ़े। अदब का एक कमाल ये भी है कि वो हमारी तहजीब करता है, नज़र व दिल को वसअत देता है, हमारे रवैयों को मोतदिल बनाता है, हमारी रूह और फिक्र को बालिदगी अता करता है। गोया अदब का मुताला हमें आदमी से इंसान और इंसान से और बेहतर इंसान बनाता है, और इसीलिए अदब को तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर पाशा खुद एक बहुत ही मुमताज़ यूनिवर्सिटी में ज़बान व अदब के उस्ताद हैं, यूनिवर्सिटी के निसाब में न सिर्फ शायरी, नावल, अफसाने और गैर अफसाने में जो अदब है वो भी शामिल है, खाके हैं, उनसे हमें वसअत मिलती है। पाशा साहब, अदब पढ़ाते हुए जब तालिब इल्मों से जो रुझानात सामने आते हैं, उनके जो तासुरात सामने आते हैं, उसकी क्या नवीयत होती है?
1: इससे कबल के आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं। कुरबान भाई ने एक बात कही कि शायद मैंने अदब को दरकिनार कर दिया और अदब की अहमियत से इनकार किया। मैंने अपनी गुफ्तगू में अदब की अहमियत से इनकार नहीं किया,
0: जी
1: मैंने इस हकीकत का इजहार किया है कि अदब आज की जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, साइंस का जो दौर है,
0: जी
1: तो उसकी रीच जो है वो महदूद होती जा रही है,
0: जी
1: उसकी तरफ लोगों की जो रغبत है वो महदूद होती जा रही है,
0: जी
1: कम होती जा रही है।
2: अदब अपने आप में

0: उसकी नानी पहले जो ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी,
1: जी
0: वो उनको नज़में सुनाती थी, जो आज भी स्कूलों में जब जात बच्चों को डालते हैं प्ले स्कूल में या दूसरे, तो वहाँ राइम्स उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है सबसे पहले. सबसे पहले छोटी छोटी कहानियाँ, जो हमारे यहाँ पुरानी जो किस्से कहानियाँ होती थी, हकायतें होती थी, चाहे पंचतंत्र के
1: जी
0: तर्जुमे उससे हुए हों, हितोपदेश के तर्जुमे वगैरह हुए, उन सब पे उन्हीं पर बेस्ड अलग अलग कहानियाँ बना ली लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से, वो पढ़ने को दिया
1: जी
0: जाता है.
1: हाँ
0: तो गोया अदब तो इंसानी जहन की तख्लीक में, उसकी तश्कील में, बच्चों की शख्सियत की तामीर में एक बड़ा रोल प्ले करता है. अदब का रोल बहुत कलीदी है हमारी जिंदगी में, उसकी अहमियत को कम नहीं किया जा सकता.
1: जी
0: मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अदब को लोगों ने बिल्कुल एक तरह से लास्ट तरजीहात में डाल दिया
1: जी
0: है,
1: हाँ
0: उसके पढ़ने का जो अमल पहले सिलसिला जो था वो धीरे धीरे
1: तो क्या
0: महदूद
1: हमें
0: हुआ है.
1: तरगीब देना चाहिए नई नस्ल की कि
0: अब आप
1: वो
0: देखें कि
1: उसको
0: प्रेमचंद,
1: जी
0: प्रेमचंद को देखें आप, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं
1: जी
0: उनको उठा के देखें, और भी मिसालें जा सकती हैं, इकबाल की मिसालें आप देख लें, सर सैयद के जमाने के जो हमारे दूसरे लिखने वाले थे उनको देखें, तरक्की पसंदी के जमाने के अदीबों की तरीरों को देखें, उनकी एक बड़ी रीच थी.
1: जी
0: प्रेमचंद पहला ऐसा फनकार थे कि जिनके कारीन का हल्का बहुत वसी तर था.
1: जी
0: उसकी वजह यह थी कि प्रेमचंद जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया वो दौर हिंदुस्तान में तालीम की तौसी का एक जमाना था. उससे कबल तालीम बहुत महदूद थी, नए नए स्कूल कायम हो रहे थे, जाहिर 1857 की जो तहरीक चली थी उसके उसके नतीजे में बहुत सारी इस्लाही तहरीकें चली और स्कूल कायम हुए, बहुत सारे मकतब कायम हुए, तालीमी इदारे कायम हुए. तो एक बड़ा हल्का पैदा हुआ तालीम हासिल करने वालों का, और तालीम हासिल करने वालों का हल्का जब पैदा हुआ तो अदब के पढ़ने वालों का भी हल्का उसी से बना. और प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी वो गांव की कहानियां लिखी, गांव से जाहिर है
1: जी
0: कि जोड़ा जिंदगी को अदब को, और उसमें जो कहानियां हैं अदब उनकी, बहुत से मसाइल होते हैं हमारे, हमने उन मसाइल को कभी अपनी जिंदगी में उस तरह से संजीदगी से उसको देखने का हमने कोई रवैया कायम नहीं किया था.
1: जी
0: हमने मसलन दलित मसाइल को आप देख लें, दही जिंदगी की जो माशरत है, वहां की जो लोगों की जिंदगी की तकलीफ और मुसीबतें हैं, उनको प्रेमचंद जिस तरह से पेश किया, उसकी वजह से हम सेंसिटाइज हुए.
1: जी
0: कारी उस
1: बिल्कुल
0: जमाने का सेंसिटाइज हुआ, यानी उसके अंदर हसासियत उसकी बढ़ी कि दलित ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, हम तो अपनी दुनिया मगन थे. प्रेमचंद ने हमारी तवज्जो उस तरफ रखी कि हम उनकी जिंदगी को भी देखें, इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें. तो अदब का दायरा, अदब मैं तो कहता हूं
1: जी
0: कि अदब जो है वो जितने भी उलूम हैं उन सब की माँ है. अदब, लिटरेचर इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स. लिटरेचर को आप सिर्फ लिटरेचर तक महदूद करके मत देखिए,
1: जी
0: बल्कि उसका इम्पैक्ट साइंस पे भी है, उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे भी है. आपने फिल्म की बात की, फिल्म के अदब ही तो है, ये जो हमारे सीरियल्स हैं वो सब अदब ही हैं, ड्रामे क्या हैं वो सब अदब ही हैं, बगैर अदब की इनकी तख्लीक
1: जी
0: या इनका तस्वीर नहीं कर सकते आप. तो अदब की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है, अदब की अहमियत का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, पार्लियामेंट में एक शेर पढ़ देना अलग चीज़ है,
1: जी
0: लेकिन अदब को बचा के रखना, अदब के तख्लीकी सफर को और इर्तिका की तरफ ले जाना, ये संजीदा लोगों की उनके लिए तश्वीश का सबब है. ये
1: मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपका इलाज क्या है, अगर अदब के तहीं लोगों के रुझान कम हुए हैं या उधर दिलचस्पी कम हुई है तो कोई एक इलाज भी आप जरा इस पे कि कैसे उनको रागिब किया जाए इस तरफ
0: इलाज तो ये देखिए, लिखने वाले लिख
1: नई
0: रहे हैं
1: नस्ल
0: आज भी,
1: को। जी
0: और बहुत अहम
1: इस पे हम
0: सहीफे,
1: कुर्बान साहब से भी
0: बहुत
1: बात
0: अहम अदबी
1: करेंगे।
0: सहीफे लिखे जा रहे हैं
1: जी
0: आज भी. नॉवेल जाहिर है कि चाहे वो मगरिब से या हमारे यहाँ के अपने अदीबों के जरिए लिखे गए जो
1: जी
0: नॉवेल हैं, अरुंधति जैसे जो और दूसरे लोग जो लिख रहे हैं, ये सब लोग लिख रहे हैं
1: जी
0: अपनी जगह.
1: हाँ
0: लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि उनके कारीन का हल्का
1: जी हाँ
0: क्या बढ़ रहा है या सिमट रहा है इन जनरल,
1: ये एक सवाल
0: मेरा
1: है,
0: ख्याल
1: एक
0: ये है.
1: बड़ा सवाल है।
0: उसके लिए आपने कहा ना कैसे इसको
1: जी
0: कायम किया जाए,
1: जी
0: बढ़ाया जाए. अदब की जानिब से जो एक तरह से लोगों के अंदर बेरुखी है या
1: जी
0: बेतवज्जुही है, उसकी वजह जो ये जो जमाना है मसरूफियत का,
1: जी
0: मशीनी जो दौर है वो भी, और आज इंटरटेनमेंट के बहुत सारे वसीले हैं,
1: बस
0: आज इल्म हासिल करने के बहुत से वसीले हैं, इसलिए वो उनकी तरफ भी लोग रागिब हो रहे हैं.
1: जी
0: और अदब के लिए कम से कम वक्त है, आज मोबाइल है आपके पास
1: जी हाँ
0: और दिगर तमाम लैपटॉप है, दुनिया आपके सामने है, अपनी अपनी तरजीह के मुताबिक आप उस तरह की चीज़ों को उससे देख लेते हैं और पढ़
1: जी
0: लेते हैं.
1: जी
0: अदब पढ़ने का जाहिर है कि आप प्रेमचंद का दौर लौट के नहीं आ
1: जी
0: सकता,
1: हाँ
0: तहरीरी अदब को पढ़ने की तरफ लोग अब फिल्में देख लेते हैं, लोग अब ड्रामे देख लेते हैं, और सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ में,
1: जी
0: सब
1: हाँ
0: कुछ मौजूद है. तो वो सिलसिला तो
1: पूरा
0: है,
1: तनाजुर ये
0: अदब
1: बदला
0: है
1: है।
0: अपनी जगह पे,
1: जी
0: अदब की शक्लें बदली
1: जी
0: हुई हैं, यकीन
1: शक्लें
0: इसमें
1: बदल
0: दो राय नहीं.
1: जी
0: मैं बिल्कुल सच से इतफाक करता हूँ कुरबान साहब से कि अदब की बदली हुई शक्लें हैं टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में भी,
1: जी
0: वो एक उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते. आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदब, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि अदब इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद करता
1: मदद
0: है,
1: बिल्कुल
0: उसकी फिक्र को सैकल करता है,
1: बिल्कुल
0: उसकी हसासियत को वो और सैकल करता है, पॉलिश करता है.
1: जी
0: एक बेहतर इंसान वो है जो हिस्सियत जिसके अंदर हो, एक जो हिस्सियत से बिल्कुल मुबर्रा इंसान अगर

0: तुम्हें उसको इंसान नहीं मानता।
1: बिल्कुल
0: अगर वो किसी को दुख में देखकर उसको तकलीफ नहीं होती है, माशरे में बेहंगमी को देख के अगर उसको फिक्र नहीं होती है,
1: जी
0: जो कजरवी है माशरे की हमारी जिंदगी की, उसको देख के अगर उसको फिक्र नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ कोई इंसान नहीं है। एक सेंसिटिव इंसान के लिए, एक बेहतर सेंसिटिविटी उसके अंदर और प्रमोट हो, इसके लिए अदब बहुत जरूरी है। अदब की तख्लीक भी जरूरी है, अदब का मुताला भी जरूरी है। मैं एक चीज अक्सर कहता हूँ जब जाता हूँ कहीं, तो ये बात मैं कहता हूँ कि
1: जी
0: आप साइंस को, उसकी अहमियत को से इनकार नहीं कर सकते। साइंस
1: जी
0: बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, लेकिन साइंस इंसान तख्लीक नहीं कर सकती है।
1: बेशक
0: टेक्नोलॉजी इंसान तख्लीक नहीं कर सकती। आप रोबोट बना सकते
1: जी
0: हैं, लेकिन आप इंसान को इंसान नहीं बना सकते बगैर अदब के। अदब वो काम करता है एक बहुत ही, जिसे कह लें कि एक गैर महजब
1: जी
0: इंसान
1: हाँ
0: को
1: जी
0: अगर अदब पढ़ने की लत लग जाए, तो वो, मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वो एक बेहतर महजब इंसान बन सकता है। अदब में ये सिफत है, साइंस में ये सिफत नहीं है। ये अदब का मरतबा साइंस से बालातर, मैं
1: बालातर
0: समझता
1: है। एक अहम बात की तरफ इशारा प्रोफेसर पाशा ने किया। कुरबान साहब, वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा, हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। जल्दी से एक रिमार्क आपकी तरफ से इस हवाले से।
2: नहीं, जो अनवर पाशा साहब ने कहा उससे इत्तफाक करता हूँ।
1: जी
2: वो बुनियादी बातें उन्होंने कही हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
1: जी
2: कि इस
1: हाँ
2: वक्त हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं,
1: जी
2: और उसमें
1: बिल्कुल
2: भी अब ये बड़ा जो लोग हैं उनके लिए, उनके रोज़गार का मसला पैदा हो गया है। लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायरी भी कर रही है
1: जी
2: और अदब भी तख्लीक कर रही है, लेकिन अब कैसा होगा वो, और उसको आने वाली नस्लें किस तरह से लेंगी, ये
1: जी
2: देखने वाली बात होगी। लेकिन अदब की अहमियत अपनी जगह सादिक है, वो रहने वाली है।
1: ये इस पे एतबार है। और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, अदब के हवाले से इस पे बहस हो रही है इस वक्त कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदब को फ़रोग देने का काम करेगा या अदब पे रुकावट आएगी, ये आने वाला वक्त शायद बताएगा। मासूम साहब, क्या राय है आपकी?
3: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से तो बहुत सारे खदशात हैं।
1: जी
3: उसके मुसबत पहलुओं पर लोगों की कम तवज्जो है और उसके मनफी पहलुओं पर ज़्यादा
1: ज़्यादा
3: है
1: है
3: कि क्या तबाही मचने वाली है माशरे के अंदर। एक बात अनवर पाशा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि स्कूल में बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ। मेरे
1: जी
3: घर में उर्दू के बच्चों के रसाइल भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। मेरा एक पोता है 3.5-4 साल का,
1: जी
3: और वो एक उर्दू का रिसाला उठा के लाता है और अपनी दादी से, यानी मेरी बीवी से कहता है कि दादी कहानी सुनाओ।
1: जी
3: और वो दादी उसको कहानी सुनाती है, और वो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे इतनी तवज्जो से उस कहानी को सुनता है।
1: जी हाँ
3: तो इंसान की जो सरिश्त है, यानी अभी वो 3.5-4 साल का बच्चा
1: जी हाँ
3: अभी
1: जी हाँ
3: स्कूल भी नहीं जाना
1: जी
3: शुरू
1: हाँ
3: किया है, लेकिन वो कहानियों से अल्फाज भी सीख रहा है।
1: बिल्कुल, उसकी तरफ प्रोफेसर पाशा ने इशारा किया था कि
3: जी जी
1: बच्चे
3: जी
1: कान में कहानी। जी हाँ
3: तो
1: बिल्कुल,
3: अदब इंसान की कितनी बुनियादी ज़रूरत है,
1: ज़रूरत
3: वो
1: है
3: इंसान को मुकम्मल बनाने में, जिसे अल्लामा इकबाल ने इंसान कामिल कहा है,
1: जी।
3: वो अदब ही बनाता है। अदब के अंदर फ़लसफ़ा, मंतिक और तमाम किस्म के जो उलूम हैं, चाहे कदीम उलूम हो चाहे जदीद उलूम हो,
1: जी
3: और जो साइंस की जैसे बात की जा रही है, साइंस का भी इसमें एक रोल है, आज की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है।
1: जी
3: लेकिन अदब के बगैर कोई भी ज़िंदगी का मैदान मुकम्मल नहीं होता। अदब हमारी बुनियादी ज़रूरत है,
1: बिल्कुल
3: हमारे शऊर को बेदार करने में, हमारी हिस को बेदार करने में, और हमें एक मुकम्मल इंसान बनाने में अदब एक कलीदी किरदार अदा करता है।
1: बिल्कुल
3: इसलिए अदब की अहमियत से, अफादियत से आप किसी भी तौर इनकार नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: एक पहलू अदब का, जो जो
1: जी
0: आपने कहा कि कैसे उसका मुस्तकबिल कैसा हो,
1: जी
0: कैसे उसको बचा के हम रख सकते
1: जी
0: हैं,
1: हाँ
0: या कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं,
1: जी
0: बदलते
1: हाँ
0: हैं। आप जमाने पर, जमाने तब्दीली पर आप कोई रोक नहीं लगा
1: जी
0: सकते।
1: हाँ
0: तब्दीली का अपना
1: बिल्कुल
0: निज़ाम है, वो होती रहेगी तब्दीली, चेंजेस आती रहेंगी। ये साइंस टेक्नोलॉजी, ये सारी, जाहिर है आज से 100 साल पहले का तनाजुर देखिए, मंजरनामा आज
1: जी
0: का देखिए, फ़र्क नज़र आएगा, और ये कुदरत का निज़ाम है। लेकिन उसी निज़ाम के साथ हमें अपने सर्वाइवल के लिए भी गुंजाइशें पैदा करनी है,
1: जी हाँ
0: चाहे वो इंसान की ज़िंदगी के तौर पर बहैसियत इंसान हम उसकी फिक्र
1: जी
0: करें, या बहैसियत इल्म, बहैसियत अदब, एक डिसिप्लिन के तौर पर। आज लोग उसके साथ अपने आप को हमाहंग कर रहे हैं,
1: जी
0: नई टेक्नोलॉजी के साथ भी लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं।
1: जी
0: जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ लोग सही रखे। आज आप देखें, प्रिंटेड फॉर्म में अदब जो है अब कम है इस वक्त, ज्यादातर डिजिटल फॉर्म में
1: जी
0: आपके
1: हाँ
0: सामने है।
1: बिल्कुल
0: गजल हमारी मुकम्मल हुई, फौरन हमने डाल दिया उसे फेसबुक पे, फौरन हमने उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया, फौरन हमने ट्विटर पे उसको डाल दिया, तो उसकी रीच बढ़ रही है, उस तरह से
1: बल्कि
0: बढ़ रही है। तो
3: मैं एक बात कतः कलाम कहता हूँ, डिजिटल का एक बड़ा फायदा यह है, आपकी कोई चीज छपती है कहीं उस पर आपको रेस्पॉन्स नहीं पता चलता
0: जी,
3: लेकिन आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर अपनी
1: सोशल मीडिया के जरिए
3: मैंने एक पोस्ट कल डाली थी
1: जी,
3: तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों ने उस पर कमेंट्स किए
1: जी।
0: और ये कमेंट सिर्फ आपके हिंदुस्तान के, अपने मुल्क के, अपने इलाके के नहीं है
1: जी जी,
0: वो कोई कमेंट अमेरिका से कर रहा है, कोई इंग्लैंड से कर रहा है, कोई फ्रांस से कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई अरब मुल्क से कर रहा है, यानी उसकी रीच बढ़ी है। तो हमें इस पे संजीदगी से सोचना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हम कैसे खुद को ज्यादा हम आहंग करें और उसका फायदा उठाएं और अपने अदब की रफ्तार को और ज्यादा,
3: जैसा कुरान भाई ने रेख्ता का भी जिक्र किया, रेख्ता से
0: वो भी एक शक्ल का लोग
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: नॉन उर्दू हल्का, नॉन उर्दू
2: पाकिस्तान में कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया कि उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट
1: हिंदुस्तान में, हमारे पास उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट बिल्कुल। अदब क्यों ज़रूरी, इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाती तौर पे मुझे शफी अय्यूब को खुशी इस बात की है कि हमारे जो आज के माहिरीन हैं वो बिल्कुल मायूस नहीं हैं इस हवाले से, और उनकी ये मुसबत राय है कि बहरहाल अदब की ज़रूरत है। अदब की ज़रूरत कल भी थी, अदब की ज़रूरत आज भी है, और अदब की ज़रूरत कल भी रहेगी। अदब अपनी शक्लें बदल सकता है, नावल या शायरी, अफसाने या खाके या सफ़रनामे किताबी शक्ल में छपते थे, किताबें कम छपें या ज़्यादा छपें, हम डिजिटल फॉर्म में पढ़ें, लेकिन बहरहाल अदब की ज़रूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में अदब क्यों ज़रूरी के मौजू पे बात करने के लिए प्रोफेसर अनवर पाशा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, साबिक चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस जनाब कुरबान अली साहब, मुल्क के जाने माने सहाफ़ी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यकसाम मकबूलियत रखने वाली शख्सियत जनाब मासूम मुरादाबादी, न सिर्फ एक अच्छे सहाफ़ी और अखबारात के मुदीर बल्कि बहुत अहम किताबों के सहाफ़त के मौजू पर तो खासकर बहुत अहम किताबों के मुसन्निफ़, और तीनों हजरात की ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर भी, अपने मुताले की बुनियाद पर भी ये राय है कि अदब हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मासूम साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, कुरबान साहब ने भी इशारा किया, और प्रोफेसर अनवर पाशा ने भी जोर दे के इस बात की तरफ इशारा किया कि इंसानी ज़िंदगी के लिए अदब ज़रूरी है, लिटरेचर ज़रूरी है, उसके फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अदब का मुताला करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनकर अपने समाज की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आप तीनों हजरात स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उम्मीद है हमारे सामईन को भी ये गुफ्तगू पसंद आएगी, और जो लोग अभी तक अदब से ज़रा दूरी बनाए हुए थे वो भी अदब की तरफ रागिब होंगे, अदब पढ़ेंगे, किताबें ख़रीदेंगे, खुसूसी तौर पर उर्दू अदब की तरफ रागिब होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया
4: सामईन। अभी आप समाप्त कर रहे थे ये दिलचस्प मुबाहसा, मौजू था क्या अदब ज़रूरी है। शुरका थे जनाब कुरबान अली, जनाब मासूम मुरादाबादी, प्रोफेसर अनवर पाशा, और उनसे महवे गुफ्तगु थे डॉक्टर शफी अय्यूब। इसी उम्मीद के साथ कि हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते रहेंगे और आपकी खिदमत में इससे और अच्छे प्रोग्राम हम पेश करते रहेंगे, ऐसे ही मेहमान को हम आपके रूबरू करते रहेंगे। चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश इंतजार सैफी की थी। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मौजूद के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
5: अभी आप उर्दू मजलिस सुन रहे थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

印度的里广播电台，听众朋友们，请收听 Bihar 邦的 Bhojpuri 民间歌曲。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज आप सभी को धर्मेंद्र और
2: अमीषा पटेल
1: का नमस्कार।
2: नमस्कार
1: अमीषा, आज खेलों की दुनिया की बात करें तो शतरंज की खबर है, शूटिंग की खबर है, बॉक्सिंग की, लेकिन आज हम शुरुआत करते हैं तीरंदाजी से, क्योंकि वहां से बड़ी अच्छी खबर आ रही है। जो चाइना में विश्व कप चल रहा है, तो क्यों ना चलते हैं तीरंदाजी की तरफ। चीन के शंघाई से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर है, जहां भारत की महिला रिकर्व धनुर्धरों ने एक पदक पक्का कर दिया है। भारत को सोने का पदक मिलेगा या फिर चांदी का पदक मिलेगा, ये 10 मई को तब तय होगा जब फाइनल में मेजबान चीन से उसकी टक्कर होगी। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार सुबह 7:30 बजे के आसपास खेला जाएगा। इससे पहले आज भारत की महिला टीम ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया की टीम को 5-1 से करारी शिकस्त दी। भारत की टीम में अंकिता भगत, कुमकुम महोद और दिग्गज दीपिका कुमारी शामिल हैं। इस टीम ने क्वार्टर फाइनल में वियतनाम की टीम को बेहद नजदीकी मुकाबले में 5-4 से हराया था। पहले राउंड में भारतीय टीम ने उज्बेकिस्तान को 6-2 से पराजित किया था। हालांकि दूसरी तरफ पुरुष रिकर्व टीम ने बेहद निराश किया। 8वीं वरीयता वाली भारतीय टीम दूसरे राउंड में 9वीं वरीयता वाली बांग्लादेश की टीम से 2-6 से हार कर मुकाबले से बाहर हो गई। इस टीम को पहले राउंड में बाई मिली थी। टीम में धीरज बोम्बदेबरा, तरुणदीप रॉय और यशदीप भोगे शामिल थे। रिकर्व मिक्स टीम दूसरे राउंड में ब्राजील से बेहद नजदीकी मुकाबले में 4-5 से हार गई। पहले राउंड में भारतीय टीम को बाई मिली थी। टीम में अंकिता भगत और धीरज बोम्बदेबरा शामिल थे। व्यक्तिगत मुकाबलों की बात करें तो धीरज बोम्बदेबरा को दूसरे दौर में बाई मिली। कल उनका सामना

0: अमेरिका के जैक विलियम्स से होगा। कल ही तरुणदीप रॉय कोरिया के सीओ मिंगी से खेलेंगे। महिला व्यक्तिगत वर्ग में दीपिका, सिमरनजीत, कुमकुम और अंकिता भगत तीसरे दौर में कल अपने निशाने साधेंगी। इन सभी को पहले राउंड में बाई मिली थी। दूसरे राउंड में दीपिका ने मैक्सिको की रेबिका को 6-2 से हराया था। सिमरनजीत को स्पेन की पौला गोंजालेस पर 6-2 से जीत मिली थी। कुमकुम ने जर्मनी की लीजा लुक्स को 6-2 से हराया था। अंकिता को दूसरे राउंड में भी बाई मिली थी। अब बात कंपाउंड मुकाबलों की, जहां मिक्स टीम को आज क्वार्टर फाइनल में किस्मत ने साथ नहीं दिया और टीम अमेरिका के हाथों 156-157 अंक के अंतर से हार गई। ओजस, प्रवीण देवताले और अदिति गोस्वामी की टीम सिर्फ एक अंक से सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गई। मुकाबले में 3 सीरीज तक भारतीय टीम आगे थी, लेकिन 4th सीरीज में पिछड़ गई। टूर्नामेंट के पहले राउंड में भारतीय टीम को बाई मिली थी। दूसरे राउंड में भारतीय टीम ने हांगकांग को एकतरफा मुकाबले में 159-150 से हराया था। इससे पहले कल पुरुष टीम कांस्य पदक मैच में चीन से और महिला टीम क्वार्टर फाइनल में तुर्की से मात खा बैठी थी। जहां तक व्यक्तिगत मुकाबलों की बात है, पुरुष वर्ग में तरुणदीप रॉय ने सऊदी अरब के अब्दुल्ला सलोम को 6-2 से हराया था। हालांकि यशदीप भोगे तुर्की के मेटे गेजोस से 2-6 से हार गए। कंपाउंड में कल पुरुष वर्ग के तीसरे राउंड में साहिल राजेश जाधव का सामना अपने ही देश के अभिषेक वर्मा से होगा। ओजस, प्रवीण एस्टोनिया के रॉबिन जात्मा का सामना करेंगे। महिला वर्ग में तीसरे राउंड में मधुरा का सामना अमेरिका की एलेक्सिस रुइस से होगा। ज्योति एस्टोनिया की मोरी मरिता का सामना करेंगी। अदिति कजाकिस्तान की विक्टोरिया लियान के सामने होंगी और प्रगति तुर्की की डेफने चकमक का सामना करेंगी। और ओजस, प्रवीण शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब उनकी उम्मीदें एशियन गेम्स के लिए भी बढ़ गई हैं। उन्होंने एशियन गेम्स में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। सुनते हैं उनकी ये बात।
1: एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि पिछले बार इतना अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा है इंडिया के लिए, 3 गोल्ड मेडल लेके आए। इस बार भी कोशिश रहेगी कि फिर वही सेम करा जाए, बट उस चीज़ को मैं लेके नहीं चलूँगा, क्योंकि अगर वो चीज़ अगर मैं लेके चलूँगा तो वो मे बी पाइल अप होके एक प्रेशर में भी कन्वर्ट होगी। तो एक इन्जॉयमेंट के जैसे पहले गया था वैसे ही ऐसे ये सोच के कि अरे ठीक है चलो एशियन गेम्स है, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि एशियन गेम्स इतनी बड़ी चीज़ होती है। ऐसा था 4 साल में एक बार आता है बस ये पता था, तो फिर ऐसा लगा ठीक है चलो आता है, ठीक है अगर इस बार नहीं होता अगले बार कर लेंगे। तो ऐसे जाके ऐसे गया था, मैं इस माइंडसेट से गया था और जाके 3 मेडल लेके आया, तो मे बी वो एक मेरे लिए प्लस पॉइंट था, क्योंकि मैंने फ्री माइंड से गया था कि अभी नहीं है तो अगले बार, अगर वरना ऐसा होता कि नहीं अरे तो 4 साल बाद आ रहा है फिर इसे करना पड़ेगा तो एक प्रेशर हो जाएगा। तो इस बार भी वैसे ही जाएंगे, वैसे ही खेलेंगे, मजे करेंगे उधर।
0: ये तो थी बात तीरंदाजी की, और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट की, क्योंकि आईपीएल के मुकाबले चल रहे हैं, बेहद दिलचस्प मुकाबले चल रहे हैं और अब ये लगभग तय सा होने लगा है कि कौन सी टीम आगे बढ़ेगी, कौन सी टीम पीछे छूट जाएगी। और जो मुकाबले टॉप टीमों के बीच हो रहे हैं वो खास तौर पर बहुत दिलचस्प हो रहे हैं और हर टीम अपना सब कुछ झोंक रही है प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। कल के मुकाबलों की बात करें या कल के मुकाबले की कहीं की बात करें, तो वहां पर किस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिली है ये बता रही हैं हमारी सहयोगी अमीषा।

0: IPL 2026 के कल हुए 49वें मुकाबले की बात करें तो कल सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी बादशाहत कायम रखी। उन्होंने पंजाब किंग्स को करारी शिकस्त देकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है। इस सीजन में SRH की यह 7वीं जीत है, जबकि पंजाब को तीसरी हार का सामना करना पड़ा। कल दर्शकों को किशन और क्लासेन का तूफान हैदराबाद में देखने को मिला। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो उन पर भारी पड़ गया। SRH के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने तूफानी शुरुआत की और चौथे ओवर में ही स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। हालांकि लॉकी फर्ग्यूसन ने अभिषेक और युजवेंद्र चहल ने हेड को आउट कर पंजाब को वापसी की उम्मीद दी, लेकिन इसके बाद पंजाब की लचर फील्डिंग ने मैच का रुख ही बदल दिया। ईशान किशन और हेनरी क्लासेन को कई जीवनदान मिले, जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। किशन जब 9 रन पर थे तब कूपर कॉनली ने उनका कैच छोड़ा, वहीं क्लासेन को भी 9 के स्कोर पर शशांक सिंह ने जीवनदान दिया। इन गलतियों का फायदा उठाते हुए दोनों ने अर्धशतकीय पारियां खेली। किशन के आउट होने के बाद क्लासेन और नितिश रेड्डी ने 13 गेंदों पर 29 रन बनाकर मोर्चा संभाला और SRH को 235 रनों का विशाल स्कोर तक पहुंचने में मदद की। कमिंस की कप्तानी और धारदार गेंदबाजी के चलते 236 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान पैट कमिंस ने पहले ही ओवर में प्रियांश आर्य को चलता किया और अगले ही ओवर में नितिश रेड्डी ने प्रभसिमरन सिंह का विकेट लेकर पंजाब को बैकफुट पर धकेल दिया। इसके बाद ईशान मलिंगा ने श्रेयस अय्यर को आउट कर पंजाब की पारी की लय बिगाड़ दी। इन शुरुआती झटकों में कप्तान कमिंस ने दो शानदार कैच भी लपके। मध्यक्रम की बात करें तो मध्यक्रम में मार्कस टोनिस और कूपर कॉनली के बीच एक साझेदारी पनपी, लेकिन शिवांग कुमार की गेंद पर ईशान किशन ने स्टोनिस का बेहतरीन कैच लपक कर इस जोड़ी को तोड़ दिया। सूर्यांश हेगड़े ने भी कॉनली का साथ देने की कोशिश की, लेकिन पैट कमिंस ने एक बार फिर ब्रेक थ्रू दिलाकर पंजाब की उम्मीदें खत्म कर दी। एक छोर पर कूपर कॉनली डटे रहे और उन्होंने 107 रनों की शानदार नबाद पारी खेली। कॉनली ने अंतिम ओवर में अपना पहला T20 शतक भी पूरा किया, लेकिन तब तक मैच पंजाब के हाथों से निकल चुका था। अंततः SRH ने यह मुकाबला आसानी से जीत कर प्लेऑफ की ओर मजबूती से कदम बढ़ा लिया है। SRH की जीत पर क्या कहते हैं उनके असिस्टेंट कोच जेम्स फ्रैंकलिन, आइए सुनवाते हैं।
1: We found all the feedback from our batters, particularly from the first innings, was as the innings went on, they found the pitch was slowing down quite a lot, and they found that when the Punjab bowlers were bowling off pace cutters into the wicket, it was a little bit harder to hit. So that was the feedback that our bowling group got, and obviously we used it a lot throughout that innings when we bowled. So, you know, particularly when you bat first in games, how you then try and execute your bowling plans has a lot to do with obviously the batting feedback on how the pitch is playing. So we use that advantage from batting first today to implement into our bowling innings.

इसके बाद बात करते हैं आज होने वाले मैच की, जो कि आरसीबी और एलएसजी के बीच होने वाला है। लखनऊ सुपर जायंट्स एकॉना स्टेडियम में मौजूदा चैंपियन आरसीबी की मेजबानी कर रही है और इस अवसर पर काफी रोमांच देखने को मिलेगा। एलएसजी का यह सीजन धीरे धीरे बिगड़ता चला गया है और लगातार 5 हार और अंक तालिका में उनकी निराशाजनक स्थिति खुद ही बयां कर रही है। फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स कोई भी मैच गंवाने की स्थिति में नहीं है। इस सीजन में एकॉना स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल रही है। इस सीजन में औसत स्कोर लगभग 150 रहा है, जो आईपीएल के अन्य मैदानों की तुलना में काफी कम है और गेंदबाजों को गेंदबाजी के लिए पर्याप्त मौके यहां मिल रहे हैं। वहीं बात करें अगर आरसीबी और एलएसजी के आमने सामने की, तो दोनों टीमों के बीच खेले गए 7 मैचेस में आरसीबी ने कुल 5 मैच जीते हैं और एलएसजी के हाथों सिर्फ 2 मैचेस आए हैं। और अब अंक तालिका की बात करें तो लखनऊ के लिए ये करो या मरो की स्थिति है। 9 मैचों में सिर्फ 2 जीत के बाद उनके लिए प्लेऑफ की उम्मीदें धुंधली हैं। वहीं आरसीबी 6 जीत के साथ तीसरे नंबर पर है और आज वो अपनी जगह पक्की करना चाहेंगे। वहीं और बाकी टीम्स की बात करें तो एसआरएच इस टाइम पे पहले नंबर पे बनी हुई है, दूसरे पर पंजाब, तीसरे पे आरसीबी, चौथे पे राजस्थान, पांचवे पे गुजरात, छठे पे सीएसके, सातवें पे दिल्ली, आठवें पे केकेआर, नौवें पे एमआई और आखिर में एलएसजी है।

वैसे अमीषा, अगर पॉइंट टेबल की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि एसआरएच की टीम टॉप पर चल रही है, एसआरएच की टीम की शुरुआत अच्छी रही थी, बीच में टीम थोड़ी सी लड़खड़ाई थी, लेकिन उसके बाद इस टीम ने फिर जोरदार वापसी की और इस समय टॉप पर पहुंच गई है। दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करते हैं, पंजाब के लिए शुरुआत धमाकेदार रही थी। शुरू में उन्होंने 5 मैच लगातार जीते और ऐसा लगा कि इस बार उनको रोक पाना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होगा। उनके बल्लेबाज बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, उनके गेंदबाजों ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन अब जब ये टूर्नामेंट कहें कि लीग स्टेज में थोड़ा आगे बढ़ चला है और लगभग कहें कि अब ये तय होने वाला है कि कौन कौन सी टीमें प्ले ऑफ में पहुंचेंगी, तो वहां पर पंजाब की टीम थोड़ी सी लड़खड़ा रही है, दूसरे नंबर पर खिसक गई है। अभी तक टॉप पर चल रही थी, 10 मैच उन्होंने खेले हैं, 13 अंक उनके हैं और इनमें से 6 जीत उनके नाम पर है, तो उनको थोड़ा सा अपने उन शुरुआती जो प्रदर्शन थे उनको गेन करना होगा, फिर से उसी तरफ जाना होगा अगर उनको प्ले ऑफ में पहुंचना है। आरसीबी की बात करें तो वो लगातार मिला जुला प्रदर्शन कर रही है, कभी जीत आती है उनके हाथ, कभी हार भी मिली है। अभी हालांकि उनके बहुत सारे मैच बचे हुए हैं, करीब करीब 5 मैच

बचे हुए उनके 12 अंक हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके लिए प्लेऑफ में पहुंचना बहुत मुश्किल नहीं होगा। 9 मैचों में उनके 12 अंक हैं। राजस्थान रॉयल्स ने भी शुरुआत में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, वैभव सूर्यवंशी की जो बल्लेबाजी रही थी उसकी बदौलत 12 अंक उनके भी हैं 10 मैचों में। और गुजरात की बात करते हैं तो उन्होंने 10 मैचों में 12 अंक अर्जित किए। सीएसके पिछड़ रहा था, नीचे पॉइंट टेबल में था, कभी 9वें कभी 10वें स्थान पर, लेकिन अब उनका प्रदर्शन जैसे लगता है कि निखर कर सामने आया है और ये टीम अब लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। 10 मैचों में 10 अंक, यानी संकेत इस बात का है कि ये भी प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत बड़ी दावेदार टीमों में से एक हो सकती है। दिल्ली कैपिटल्स थोड़ा सा लड़खड़ा रही है, उनके लिए मौके फिसलते चले जा रहे हैं। 7वें स्थान पर है, 8 पॉइंट है उनके 10 मैचों में। उनको अब किसी भी मैच में शिकस्त अगर मिली तो मामला पूरा गड़बड़ हो सकता है। केकेआर लगभग कहें कि प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुका है, 9 मैच 7 अंक। मुंबई इंडियंस की भी हालत खराब है, 10 मैचों में 6 अंक, और ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं ये टीम अपनी लय हासिल नहीं कर सकी है। शुरुआत से ही बहुत ही दिक्कतों में दिखाई दी है ये टीम। और एलएसजी तो जैसे अपने प्रदर्शन के शीर्ष पर पहुंच ही नहीं सकी है, 9 मैच खेल चुकी है, सिर्फ 4 अंक हैं, और ये इस बात का संकेत है कि इस टीम के लिए संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। तो ये आईपीएल की बात थी। अब बात कर लेते हैं मुक्केबाजी की। ताशकंद में भारतीय युवा मुक्केबाजों के विरोधी पर पड़ते जोरदार पंच से पदकों की झड़ी जारी है। युवा जोश से लबरेज भारतीय बॉक्सर्स ने एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप में अब तक 27 पदक पक्के कर लिए हैं। कमाल तो यह है कि अंडर 15 लड़कियों के दल ने 15 में से 14 पदक पक्के किए हैं, अंडर 15 लड़कों ने 15 में से 13 पदक पक्के कर लिए हैं। अंडर 15 लड़कों के वर्ग में एस वसंत अशोक कुमार ने 37 किलो वर्ग में अपने ताबड़तोड़ पंच से यूएई के मोहम्मद अल्बामा को पराजित किया। उधर नितिन ने 40 किलो वर्ग में कजाकिस्तान के सायत मिंगदिबे और हर्षवर्धन जीना ने 55 किलो वर्ग के दूसरे दौर में कजाकिस्तान के मोहम्मद फौजलेव को ताबड़तोड़ प्रहार से आरएससी पर हराया। यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में ताजिकिस्तान के रसूल जीन करियो और रोहित ओठिना ने 35 किलो वर्ग में अपने से मजबूत मंगोलियाई प्रतिद्वंदी तेमुलेन मुंखबायर को 4-1 से शिकस्त दी। समीर बोहरा 43 किलो वर्ग में थाईलैंड के चुटिनान याराम को और निंगपोंग गांबा मैतेन ओइना ने 46 किलो वर्ग में मंगोलिया के मुंख ओचिर गोंजोरिंक को 5-0 से पराजित किया। मोहम्मद यासिर ने 58 किलो वजन वर्ग में कजाकिस्तान के मेरलान बेसेखान को 5-0 से मात दी है। तो ये परिणाम अभी तक आए हैं और बहुत ही दिलचस्प परिणाम।

0: सिंह लखेरा और इनके परिवार के सदस्यों की। भोपालगढ़ राजस्थान से भी हमें फरमाइश आई है धर्मेंद्र छिपा और इनके परिवार के सभी सदस्यों की।
1: और ये फरमाइश हमारे पास में आई है बिलाईगढ़ से, भेजने वाले हैं रोशन लाल देवांगन, इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, भेजने वाले रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव मायचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले कंचित शर्मा, सतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, मास्टर देवेंद्र सिंह, सर्वेश गिरी महाराज, कुमारी तनु और शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा की। तो सुनवाते सभी की फरमाइश पर यशपाल की आवाज में ये रागनी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे यशपाल की आवाज़ में, ये रागनी ऑर्केस्ट्रा था भाई चंद्रकिरण का।
1: और अतुल भाई देखिए, हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन तो कराते ही हैं अपने सभी साथियों का, साथ ही साथ कुछ जानकारी भी अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, सभी भाई
0: बिल्कुल
1: बहनों तक पहुंचाते हैं। तो आज ऐसी ही एक जानकारी है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। ये योजना भारत सरकार द्वारा बेटियों के भविष्य, शिक्षा और शादी को सुरक्षित करने के लिए शुरू की गई और एक छोटी बचत योजना है। अतुल भाई, इसके तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बेटी के नाम पर 250 रुपये से 1.5 लाख तक का सालाना जो निवेश है वो किया जा सकता
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और देखिए इसमें जो है, जो वर्तमान इस पर ब्याज मिल रहा है ना पायल बहन, वो 8.2% की दर से मिल रहा है, और यह जो है ये कर मुक्त रहेगा।
1: टैक्स फ्री ब्याज,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और देखिए इसकी जो पात्रता है वो 10 वर्ष से कम उम्र की जो बेटी है उनके माता पिता या अभिभावक जो हैं वो उसके लिए खाता खोल सकते हैं। और इसमें जो निवेश सीमा है वो न्यूनतम 250 रुपये से और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष है।
0: बिल्कुल। तो ये तो रही बात सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं मनसा राम और ऋषिपाल चौहान। इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए पायल बहन, और ये SMS हमारे पास में आया है भाई संदीप मक्कड़ का, और ये हमें फरमाइश भेज रहे हैं भाई।

0: पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से। और ये फरमाइश आई है गांधीनगर गुजरात से, भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है जलालपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं श्रवण कुमार प्रजापति और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव बड़दू छेना जिला भिवानी से, भेजने वाले भाई हैं महिपाल श्योरण और इनके परिवार के सदस्य। और इन्हीं को सुनने के लिए ये फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम नागरकोरा जिला राज नांद गांव छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले भाई हैं बबलू साहू और इनके परिवार के सदस्य। और ये फरमाइश हमारे पास आई है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले भाई हैं खिलेश कुमार साहू और परिवार के सभी सदस्य।
0: ये फरमाइश आई है दुर्गा कालानी हांसी से, भेजने वाले हैं राजू मिगलानी और उनका पूरा परिवार। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से भी फरमाइश भेज रहे हैं विजेंद्र विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार। एकता कालानी रोहतक से फरमाइश भेज रहे हैं सीताराम कांगड़ा और इनका पूरा परिवार। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से फरमाइश भेज रहे हैं रवि कुमार राहुल और उनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है नूर महल सीतामढ़ी बिहार से, भेजने वाले हैं भाई मुर्शद जहानाज और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है नगर निगम वार्ड नंबर 28 से, भेजने वाले हैं नाज मंजल महसौल सीतामढ़ी बिहार से ही अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू और इनका पूरा परिवार।
1: हनुमानगढ़ फजिलका से ये फरमाइश भेजी है रमन वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है जनकपुरी सहारनपुर से, भेजने वाले भाई हैं जॉन डी कैस्ट्रो और परिवार के सभी सदस्य। नागोड़ा छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश भेजी है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है मंटू शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश इन्होंने भेजी है गाँव शेरदा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
0: ये फरमाइश आई है जलालाबाद वेस्ट से, भेजने वाले सुरेश गगनेजा उनका पूरा परिवार। दतरंगी से फरमाइश भेज रहे हैं भागवत वर्मा उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आ रही है बक्सर बिहार से, भेजने वाले सरफुद्दीन अंसारी उनका पूरा परिवार। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है गाँव चौलदा बागपत से, भेजने वाले संजय ढींगिया और इनका पूरा परिवार। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं मेहर अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। सुनवा दें सभी की फरमाइश पर मनसाराम चौहान और ऋषिपाल चौहान की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे मनसाराम चौहान और ऋषिपाल चौहान की आवाज़ में। ये रागनी और किस्सा था भाई मोर ध्वज का, और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 7 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
2: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरला में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती है। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉ मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री रामफल ने भारत के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में विशेष रुचि दिखाई है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोत की टीम का सामना चीन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और देखिए, अपने इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं भाई बातचीत, जानकारी और भाई समय समय पर अपने कृषि विशेषज्ञों द्वारा अपने सभी किसान भाइयों को जो है जानकारियाँ दिलवाते भी रहते हैं, और अपने कार्यक्रम के माध्यम से छोटी छोटी जानकारियाँ भाई हम भी अपना साझा करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, और भाई इन जानकारियों से निश्चित तौर पर जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं अतुल भाई, वो लाभ जरूर उठाते होंगे।
0: बिल्कुल, तो ऐसी एक जानकारी हम भी लेकर के आए हैं, सहकारी जैविक समिति द्वारा किसानों को लाभ, और इसकी जानकारी दे रहे हैं विपुल मित्तल, और इनसे बातचीत कर रहे हैं PS भाटी। तो पायल बहन लेते हैं ये जानकारी।
2: किसान बहनों भाइयों, किसान की तरक्की के लिए भारत सरकार भी बिल्कुल तत्पर है। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया सहकारिता को लेके, और उनके कई तरह के विंग काम कर रहे हैं। कई तरह की राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं तैयार की गई हैं और अपने काम शुरू कर दिया है। इसी तरह की एक संस्था है NCOL, यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये क्या किसानों के लिए काम कर रही है, आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं NCOL के प्रबंध निदेशक श्री विपुल मित्तल जी। मित्तल जी, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये संस्था नई है और किस तरह किसानों के लिए काम कर रही है?
3: किसान भाइयों नमस्कार, मुझे ये आपके साथ साझा करते हुए बड़ी खुशी है कि राष्ट्रीय कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का गठन बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में जनवरी 2023 में किया गया, और इस कम समय में, पिछले 2 से 2.5 वर्ष के समय में, हमने लगभग 14,000 से अधिक प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी अर्थात पैक्स को अपने साथ जोड़ लिया है। तो हमारे 14,000 से अधिक मेंबर्स हैं और उनके साथ जुड़े हुए सब किसान भाई हमारे मेंबर्स हैं। और अब जो हमारी मुहिम है वो इस तरफ है कि हम कैसे अपने जो ये 14,000 मेंबर्स हैं इनको जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करें। तो भारत सरकार का और हमारा भी ऐसा मानना है कि जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उनको बाजार से जोड़ने की है, और उनको सही बाजार मूल्य दिलाने की है, और उनको

0: उसका प्रीमियम दिलाने की है जो वो जैविक खेती करते हैं। तो उसी तरफ जो हमारा कदम है वो हमने बढ़ाया है, और इसके तहत सर्वप्रथम हमने क्या किया कि एक ब्रांड लॉन्च किया। हम सब अमूल की बात करते हैं तो अमूल एक ब्रांड है, आप ब्रांड को जानते हैं, आप बाद में जानते हैं कि उसके पीछे 36 लाख महिला किसान जुड़ी हैं, उनसे दूध रोज इकट्ठा होता है, उससे प्रोडक्ट बनते हैं और बाजार में उतरते हैं, और जब कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को अमूल के नाम से जान के खरीदता है तो किसान को फायदा होता है। तो इसी संदर्भ में हमने भारत ऑर्गेनिक्स के नाम से ब्रांड स्थापित किया। उस ब्रांड के तहत हमने 27 प्रोडक्ट बाजार में उतारे, जिसमें मुख्य हैं आटा, दालें, खांडसारी, चावल, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि, और इन प्रोडक्ट्स को हमने भारत ऑर्गेनिक्स के नाम पे सभी प्रमुख जो चैनल्स हैं उसमें हमने इनको रजिस्टर करवाया है और इनको मुहैया कराया है। तो आज अगर फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में बात करें या बैंगलोर में बात करें, तो जिस भी चैनल पे आप जाएंगे, दिल्ली में आप चाहे सफल के स्टोर में जाएं, चाहे मदर डेयरी के स्टोर में जाएं, चाहे केंद्रीय भंडार में जाएं, चाहे आप रिलायंस में जाएं, चाहे डीमार्ट में जाएं, या ऑनलाइन शॉपिंग करें किसी भी प्लेटफॉर्म से, भले ही वो ब्लिंकिट हो, स्विगी हो, जेप्टो हो, बिग बास्केट हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, सब पर आप जाएंगे तो आपको भारत ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या किया कि सर्वप्रथम तो हमने अपना एक मार्केट एस्टेब्लिश करना शुरू किया जैविक उत्पादों के लिए, अपनी एक साख बनाई, और इसके साथ साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए 14,000 मेंबर्स हैं और उनके किसान भाई हैं, उनको हमने जैविक खेती की तरफ प्रोत्साहित करते हुए उनको जैविक खेती के बारे में बताना शुरू किया है। तो हमारा एक फुल फ्लेज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज डिपार्टमेंट है जो कि उनको समय समय पर इंफॉर्मेशन शेयर करता है, उनको ट्रेनिंग देता है और उनको कैसे जैविक की ओर बढ़ना है उसके बारे में पूरी जानकारी देता है।
1: मित्तल साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो किसान हमारे जैविक उत्पाद तैयार कर रहे हैं, चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे और दालें हो, तो आपकी संस्था से किस तरह जुड़ सकते हैं जिससे अपने उत्पाद को आप तक पहुंचा सकें?
0: इसमें आपको समझना ये जरूरी है कि जैविक उत्पाद जब हम किसी को कहते हैं तो उसमें ना दो चीजें प्रमुख हैं। पहली तो वो जैविक रूप में उत्पाद की गई हो, और दूसरा उसका एक प्रमाणन हो, सर्टिफिकेशन हो। और हिंदुस्तान में दो प्रकार के प्रमाणन चलते हैं, एक एनपीओपी कहा जाता है जिसको कि अपीडा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जरिए मॉनिटर करती है, और दूसरा पीजीएस कहा जाता है जिसको कि एनसीओएनएफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत उसको मॉनिटर करती है। तो हमने अभी क्या शुरू किया है कि जो भी किसान या किसान समूह सर्टिफिकेशन प्राप्त किए हुए हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं, और आपके प्रोग्राम के जरिए भी हम आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारी वेबसाइट www.ncol.coop पर जाएं और वहां पर अपना पंजीकरण कराएं। ये इतना सुविधाजनक और पारदर्शी हमने बना दिया है कि आप हमारी वेबसाइट पर जाकर और हमारे इस पंजीकरण व्यवस्था से अपने ग्रुप को पंजीकृत कराएं, अपना सर्टिफिकेट अपलोड करें और उसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप हमें दे सकते हैं उसकी भी जानकारी हमसे साझा करें। ये जानकारी जैसे ही हमें प्राप्त होती है हम ग्रुप्स के साथ में खुद स्वयं पहल कर उनसे जुड़ते हैं और उनके प्रोडक्ट्स को बाजार से अधिक भाव पर यानी कि जैविक का प्रीमियम देते हुए खरीदते हैं और उनको हम अपने कस्टमर्स तक लेके जाते हैं।
1: मित्तल साहब, एक बार और हमारे किसान भाइयों को बताएं जिससे कि बहुत सारे सुन रहे हैं, नहीं पूरा लिख पाए तो दोबारा भी सुन सकें।
0: जी जी, तो हमारी जो संस्था है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.ncol.coop। इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी और सुविधाएं प्राप्त होंगी। जैसे सर्वप्रथम अगर आप हमारे मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको एक ऑनलाइन मेंबरशिप फॉर्म मिलेगा और आप वहीं पर मेंबरशिप का फॉर्म भर के वहीं पर पैसे जमा करके आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी जैविक का प्रमाण पत्र है, तो आप हमारे सोर्सिंग आइकॉन पे जाके वहां पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और जैसा मैंने बताया उस पंजीकरण में आपका सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट आप हमें देना चाहते हैं वो अपलोड कर सकते हैं और हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे। इसके अलावा अगर आप कोई प्रोसेसर हैं, यानी कि आपके पास सुविधा है दालों को मिलिंग करने की या गेहूं का आटा बनाने की या पैडी से राइस बनाने की, तो भी आप अपनी जानकारी हमसे साझा कर सकते हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट जब हम खरीदते हैं किसानों से तो उसकी प्रोसेसिंग भी हमें करानी पड़ती है। इसके अलावा हम रोज का जो हमारा बाजार का भाव है वो भी वहां पर हम बड़ी पारदर्शी रूप में अनाउंस करते हैं, तो आप स्वयं किसान भाइयों जाकर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर कि आज का जो भी आपकी मंडी में मूल्य चल रहा है, मान लीजिए गेहूं का या तूर दाल का, हम उसके ऊपर में जैविक प्रीमियम देकर आपसे खरीदने की मंशा रखते हैं। जी,
1: किसान भाई इससे जुड़ के यानी कि बाजार भाव से अच्छा पैसा आपको मिले।

0: और जो भी हमारे मित्तल साहब कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके मन में ये जिज्ञासा है कि भाई अब हमें पैसा ज्यादा मिले, क्योंकि उत्पादन थोड़ा जैविक में कम होता है, इसके लिए किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: तो जैसा मैंने बताया कि जैविक प्रीमियम उसी का नाम है कि हम किसानों को ज्यादा पैसा देना चाहते हैं, उनकी जो भी बाजार की भाव है केमिकल प्रोडक्ट यानी कि केमिकल द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट्स के, उससे हम ज्यादा भाव देना चाहते हैं। परंतु मैं इसमें आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देश भर में काफी किसानों से संपर्क किया है, बातचीत होती रहती है, तो सबका कहना यह है कि जैविक खेती कर उनकी उपज कम नहीं हुई। तो जैविक खेती शुरू में हो सकता है 1 या 2 साल थोड़ी सी कमी आए, वो निर्भर करता है कि आपकी जमीन किस प्रकार की है, उसमें कितना आप केमिकल ऑलरेडी डाल चुके हैं और उसको कितनी क्षमता हो चुकी है। लेकिन मुख्यतः सभी किसानों ने मुझे बताया कि जैविक से उपज कम नहीं होती, लेकिन फिर भी जैविक का हमें प्रीमियम देना है और हम देंगे, और उस वो आप डिजर्व भी करते हैं, आपको मिलना भी चाहिए, क्योंकि जैविक खेती करने में मेहनत ज्यादा होती है। और जब तक कोई हम एक सिस्टम में बंध गए हैं, उससे अगर हम बदलना चाहते हैं तो प्रोत्साहन तो देना ही बनता है।
0: सही कहा मित्तल साहब, और हमारे किसान भाइयों को ये खुशी भी होनी चाहिए कि आपके उत्पाद पूरे विश्व स्तर पर मांग बढ़ती आहिस्ता आहिस्ता जारी है और मांग बढ़ी हुई भी है। मित्तल साहब, अभी तक की क्या उपलब्धियां रही हैं और आगे की आप क्या योजना है?
1: तो जैसा मैंने कहा कि हमारी मुख्य उपलब्धि बड़ी यंग संस्था है, मात्र 2.5 वर्ष इसको हुए हैं, और इस कम अवधि में सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि तो यही है कि हम 14,000 किसान संस्थाओं को हमारे साथ जोड़ पाए, जिन्होंने हमें 21,000 रूपए की राशि दी है एज मेंबरशिप फी। तो इतनी बड़ी राशि देकर मेंबर बनना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब किसानों को जैविक समझ में भी आता है, उसकी जरूरत भी महसूस होती है, और उन्हें विश्वास है कि एनसीएल ऐसा कुछ कार्य करेगी कि उनको आने वाले समय में भविष्य में लाभ होगा। दूसरी हमारी उपलब्धि है ये भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड जो है, ये हमने रजिस्टर कराया है। जैसा मैंने पहले कहा, इसको हमने सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध कराया है, और इसको हम अब जो है उसको प्रसारित कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, जिससे कि घर घर में लोगों को विश्वास हो कि अगर उन्हें शुद्ध जैविक खाना खाना है तो उन्हें भारत ऑर्गेनिक्स ही लेना है। इसके अलावा जो हमारी उपलब्धि कहलाएगी कि हमने ये 27 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, और आने वाले समय में हम और करीब 5 से 10 प्रोडक्ट्स हम और लाने वाले हैं, जिनमें मुख्य होगा घी, मखाना, नमक, और इसके अलावा मसाले और मिलेट्स, और आने वाले समय में हो सकता है हम खाद्य तेल भी लेके आए, जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, जो कि शुद्ध जैविक रूप से कोल्ड प्रेस रूप से बनाए जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने कहा हम अभी दिल्ली और बैंगलोर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन आने वाले समय में हम पूरे हिंदुस्तान में इस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने वाले हैं, सो वो भी हमारा एक आने वाला प्लान है। इसके अलावा मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारा प्रोडक्ट बहुत ही जल्द आपको सब सरकारी स्टोर्स में भी मिलेगा। ऑलरेडी केंद्रीय भंडार में हम अवेलेबल है, मदर डेयरी सफल अवेलेबल है, नाफेड़ में अवेलेबल है। इसके अलावा हमारी बातचीत काफी स्टेट फेडरेशन से चल रही है, हमारी बातचीत आर्मी से चल रही है, हमारी बातचीत पुलिस से चल रही है, तो हमारे प्रोडक्ट्स सब लोग लाइक कर रहे हैं और सब जगह उपलब्ध होते जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि हमारी असली सफलता तभी है जब सब किसान भाई हमसे जुड़े और वो कहें कि उनको हमारे आने से, हमारे साथ जुड़ने से लाभ हो रहा है।
0: बिल्कुल मित्तल साहब, आपने सही कहा कि हमारे किसान भी जागरूक होंगे, और किसान भाइयों आपको भी बहुत बचत होगी और हमारे देश को भी बहुत बचत होगी। मित्तल साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इन सब बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे अतुल भाई, ये बातचीत सहकारी जैविक समितियों द्वारा किसानों को क्या लाभ हो सकता है, इसमें बातचीत कर रहे थे विपुल मित्तल से पीएस भाटी।
3: और देखिए अब भाइयों को मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं मोमराज की आवाज में ये उपदेश।

पायल भैना भी हमारे भाई सुन रहे थे मामराज सिंह की आवाज़ में ये उपदेश, और चलते चलते एक और रागनी सुनवाते हैं मामराज सिंह की ही आवाज़ में अपने सभी किसान बहन भाइयों को।

0: गोपाल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे मोमराज सिंह की आवाज़ में ये रागनी। और अब समय हो चला है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सात बजकर 30 मिनट हो चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम गजल और कव्वाली। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल।

नाराजगी से भरे चेहरे ने साफ जाहिर कर दिया मेरे चेहरे की हर एक लम्हा में मोहब्बत दिखाना उन्हें नागवार गुजरा। कहीं तो मोहब्बत का ऐसा आलम और कहीं कि मोहब्बत की शुरुआत कुछ इस तरह कीजिए कि लबों पर नाम हमारा हर वक्त नजर आना चाहिए।

मोहब्बत करना और निभाना दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है। आज ऐसे मोहब्बत जहाँ मोहब्बत की मोल समझ में आए कम ही दिखते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, यूं मोहब्बत कीजिए कि मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए, यूं मोहब्बत कीजिए कि मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए, गम चाहे कितना भी मिले मोहब्बत बढ़ती जाए।

0: आकाश में दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 7:45 होने को है। अब सुनिए प्रादेशिक में समाचार।
1: आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली में नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। और राष्ट्रीय नाटक विद्यालय कल से वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के रणनीतिक संकल्प और राष्ट्रीय दृढ़ता का निर्णायक प्रतीक है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये वो दिन था जब भारत के जवानों ने आतंकवाद को अभूतपूर्व शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ करारा जवाब दिया। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि आज नई दिल्ली में उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया था। उन्होंने कहा कि

0: उतरे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य परियोजना के अंतर्गत 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस राशि से द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल परिसर में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, संकाय आवास और आधुनिक अकादमिक ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस परियोजना के तहत प्रतिवर्ष 250 MBBS सीटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक चरण में 150 छात्रों के साथ शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना में आधुनिक और टिकाऊ निर्माण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बिल्डिंग को भूकंप से सुरक्षित बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना की गुणवत्ता और समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह परियोजना केवल एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं है, बल्कि दिल्ली के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है। नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
1: दिल्ली सरकार में श्रम और रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि इस पहल से 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा।
4: 40 साल से ऊपर के सभी श्रमिकों का निशुल्क चिकित्सा परीक्षण भी होगा और इलाज की व्यवस्था भी कराई जा रही है, और दिल्ली सरकार इसमें आगे बढ़ते हुए अपना भी योगदान करेगी। तो साइट्स पे जहां श्रमिक काम कर रहे हैं, जो उनके घरों में जाकर भी चिकित्सा परीक्षण हो जाए, अगर कोई अस्पताल तक नहीं आ सकता और ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हो जाए, इसके लिए दिल्ली सरकार इस योजना में अपना हिस्सा जोड़ेगी।
1: राजधानी में मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जन जागरूकता अभियान चला रहा है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सप्ताह नालियों और जलाशयों में लार्वारोधी दवा का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। जन स्वास्थ्य विभाग के 4,100 MTS कर्मचारियों ने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 121 लाख से अधिक बार घरों का दौरा कर मच्छरों के प्रजनन की जांच की। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने आज शाहदरा उत्तर जोन के दिलशाद गार्डन और झिलमिल क्षेत्र में मुख्यमंत्री विकास निधि के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर निगम समूह ने सड़क निर्माण, नाली विकास, पैदल यात्री बुनियादी ढांचे और अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। निगम ने गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नालियों की उचित व्यवस्था, निर्माण और विध्वंस कचरे की नियमित निकासी और शौचालय ब्लॉक तथा सार्वजनिक उपयोगिताओं के बेहतर रखरखाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आदेश जारी किए। साथ ही अधिकारियों को आश्रय स्थल की मरम्मत कार्यों के लिए अनुमान तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। संचार मंत्रालय ने बताया कि इसे आधुनिक वास्तुकला, बेहतर ग्राहक संपर्क क्षेत्र और डाक विभाग के आधुनिकीकरण के अनुरूप बनाया गया है। नए डाकघर में बेहतर पहचान, विशिष्ट दृश्य, बेहतर ग्राहक इंटरफेस और आधुनिक इंटरफेस जैसी सुविधाएं हैं। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इंडिया पोस्ट हर साल लगभग 7 करोड़ 50 लाख पार्सल और 90 करोड़ डाक वितरित करती है। श्री सिंधिया ने बताया कि 4 वर्षों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से 13 करोड़ ग्राहक जुड़ गए हैं और डाकघर बचत बैंक में 23 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। श्री सिंधिया ने कहा कि डाकघर जनसेवा का सशक्त माध्यम है।

0: भारत देश में अगर रक्त का संचार हृदय के रूप में कोई विभाग करता है तो मेरा डाक विभाग करता है। 1,65,000 पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, अनुमान लगाओ 6,50,000 गांव हमारे देश में, हर 4 गांव में कम से कम एक डाक विभाग तो है, और जहां डाकिया डाक विभाग डाकघर ना हो वहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आपको मिलेगा।
1: संचार राज्य मंत्री चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा कि डाक विभाग देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि इंडिया पोस्ट ने पत्रों और पार्सलों से आगे बढ़कर वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण, सुशासन और नागरिक सेवाओं को सक्षम बनाने का काम किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डाकघर अब बैंकिंग और बचत सुविधाओं सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आधार कार्ड को लिंक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी सेवाओं के एकीकृत होने के बाद प्रत्येक डाकघर अब जनसेवा केंद्र बनकर उभरा है, जिन्हें अब जनसेवा केंद्र का नाम दिया गया है।
2: हमारे पोस्ट ऑफिसेज केवल एक चिट्ठी पत्री पहुंचाने के तक सीमित नहीं है, आज हमारे पार्सल से लेकर के बैंक बचत तक हर तरह की सुविधाओं से, उसमें हमने आधार कार्ड जोड़ा, उसमें हमने पासपोर्ट सर्विसेज जोड़ी। इस सबके जोड़ने के बाद जिस तरीके से आज हमारा हर पासपोर्ट ऑफिस जो है वो जन सेवा का केंद्र बन चुका है।
1: उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में 1,600 से अधिक नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि यह पहल दिल्ली के लिए कुशल कार्यबल के निर्माण में पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। उन्होंने बताया कि ये युवा सदस्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में अमृतकाल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
3: हमारा कंट्री एक यूथ का कंट्री है, तो प्रधानमंत्री जी ने काफी बारी कहा है कि विकसित भारत में यूथ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, ज्यादातर यूथ हमारा फ्यूचर है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मुखर्जी नगर से नकली दवाओं के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से लगभग 6 करोड़ रुपए की नकली दवाएं बरामद की गई। इनमें नकली टीके, इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, एंटीसीरम सहित कई महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। अपराध शाखा ने इंदिरा विकास कॉलोनी में छापेमारी में अवैध दवा निर्माण इकाई का भी पर्दाफाश किया है। पुलिस आयुक्त पंकज सिंह ने बताया कि बरामद की गई कुछ दवाइयां सरकारी आपूर्ति के लिए थीं, जिन्हें दोबारा पैक करके निजी बाजार में बेचा जा रहा था।
4: इंदिरा विकास कॉलोनी में एक रेड की और जिसमें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने एक बस्ट की, जिसमें ये पता चला कि इसमें कई टाइप की दवा है। कुछ दवा ऐसी भी मिली जो गवर्नमेंट सप्लाई के लिए थी और इनको ये रीपैकेजिंग करके प्राइवेट मार्केट में बेचता था।
1: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि कल दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होने वाले IPL मैच के मद्देनजर राजधानी के अरुण जेटली स्टेडियम में आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहरलाल नेहरू मार्ग और आसफ अली रोड पर भारी जाम रहने की संभावना है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD कल से 14 जून तक वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव आयोजित करेगा। एक रिपोर्ट।
5: एक माह से अधिक तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न शैलियों और रंग रूपों के 10 नाटकों की कुल 26 प्रस्तुतियां होंगी। महोत्सव में प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य नाटकों में बायेन, ताजमहल का टेंडर, बंद गली का आखिरी मकान, मायरी मैं कासे कहूं, तमस, अंधा युग, बाबूजी, आधे अधूरे और समुद्र मंथन शामिल है। साथ ही दर्शक इन प्रस्तुतियों के टिकट ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। वहीं महोत्सव का उद्घाटन रंगमंडल की नवीनतम प्रस्तुति तमाशा से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंग निर्देशक भानु भारती ने किया है। महोत्सव का समापन अगले महीने की 14 तारीख को समुद्र मंथन नाटक के साथ किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
1: मिजोरम और जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल तथा स्वच्छता विभाग ने कल नई दिल्ली में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए। राजधानी में आज दिन के समय

धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में कल मौसम साफ रहेगा, अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 805 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेहरू प्लेस डाकघर के नए भवन का उद्घाटन किया। दिल्ली में नकली दवाओं के रैकेट का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कल से वार्षिक ग्रीष्मकालीन रंग महोत्सव का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका का। इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती।

अपने समय का सुपरहिट गाना आशिकी फिल्म से अनुराधा पौंडवाल और कुमार सानू की आवाज़ में। कहते हैं कि मोहब्बत से जुड़ी हर बातें, हर किस्से बहुत ही अहम होते हैं और वो पुता उम्र याद भी रहते हैं। पहला मोहब्बत, उसके एहसास और उसके जज्बात कई गीतों में, उसके बोल में बहुत ही खूबसूरती से ढाला गया। उन खूबसूरत गीतों में एक गीत ये है जो अभी आप सुनेंगे। और पहले मोहब्बत की जब बात होती है तब जितने भी गीत बने वो सारे के सारे हिट हुए। ये गीत भी हिट है, हालांकि फिल्म उतनी हिट नहीं हुई, लेकिन गीत के कारण फिल्म को आज भी याद किया जाता है।

इस गीत में, इस गीत की खूबसूरती, इस गीत के बोल और साथ साथ इसकी म्यूजिक, सब कुछ बेहतरीन। फिल्म हम हो गए आपके, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक। ऐसे ही एक गीत और भी है जिसमें अपने मन की बात कुछ यूं कहा गया है, जहां दिल की बात भी निकल कर सामने आ रही है और साफ साफ बोल दिया गया कि हमारी हसरत है आपसे दिल लगाने की। गीतों की ये बोल गीत को हिट बनाते हैं। ये फिल्म हिट भी रही, इसके गीत भी हिट रहे। आइए सुनते हैं इस गीत को।

फिल्म सैनिक से आपने इस गीत को सुना, स्वर कुमार सानू और साधना सरगम। गीतों की ऐसी झड़ी आई थी, एक वक्त ऐसा हुआ था जब सारे के सारे गीत हिट हो रहे थे और सारे के सारे रोमांटिक गीत बनने लग गए थे। वो समय था 80s और 90s का। उस वक्त जितने भी फिल्मों में जो भी गीत आ रहे थे वो सब हिट हो रहे थे और एक से बढ़कर एक। उनमें से कई ऐसे थे जो बिल्कुल नौजवान और कहते हैं कि यंगस्टर्स के लिए वो गीत बने, और उन गीतों में ऐसा कशिश था कि फिल्म को भी उसने हिट कर दिया। उसी में से आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत मालिका, फिल्म संगीत पर आधारित एक कार्यक्रम पूजा भारती के साथ। और गीतों में वो गीत जो एक जमाने में बिल्कुल हिट रहे, और जैसे आपने अभी जिस गीत को सुना फिल्म दिल से, उदित नारायण और अनुराधा पौंडवाल की आवाज में, इन गीतों में एक ऐसा कशिश था कि उस वक्त फिल्म हिट हुई सबसे ज्यादा गीतों की वजह से। ऐसे में और भी कई फिल्में आई उसी वक्त में, लेकिन फिलहाल उन गीतों का सिलसिला जो उस वक्त हिट हुए थे उनमें से एक गीत थोड़ा सा हट के, लेकिन मोहब्बत से बढ़कर, यानी कि मोहब्बत ने अपनी चूड़ी की खनक से किसी को पुकारा है, गीतों का ये एक और सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। आइए सुनते हैं।

बात हो रही थी जिस वक्त फिल्म दिल आई, उस वक्त फिल्म एक और ऐसी भी आई थी जो बिल्कुल दिल फिल्म के साथ अपने कदम से कदम मिला रही थी, और वही हिट, वही गाने, और साथ ही साथ वही जज्बात जो यंगस्टर्स के दिलों में होते हैं, उन सबको उकेरा था इस फिल्म ने भी। इस फिल्म का भी गीत सुनते हैं आइए। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब फिल्म संगीत के कार्यक्रम में गीतों का वो सिलसिला चलता है जब एक सुर पकड़ता है, जब मोहब्बत, पहले मोहब्बत और उसके एहसास की बात होती है, तब ऐसे ऐसे गीत जो अपने शब्दों के कारण, अपनी म्यूजिक कारण हिट हुए और उसने फिल्म को भी हिट कराए, तो उन गीतों में सबसे अहम भूमिका होती है कि उस फिल्म की

जो कहानी है वो उसे गीतों से मेल खा रही है कि नहीं। और ज़्यादातर फिल्में, या कहें तो सारी फिल्में ऐसी बनती हैं कि जो गीत फिल्म की स्टोरी से मेल खा रही हो, लेकिन जब ऐसी गीत जो लगता है कि वो फिल्म के लिए ही तो बनी है, उसे इस फिल्म के लिए ही तो बनाया गया है, उन गीतों में से ही सारे गीत आज आप सुन रहे हैं, क्योंकि ये फिल्म और उसके गीत एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के पूरक है, ऐसा प्रतीत होता है, और यही एक कारण है ये सारे गीत हिट हुए थे।

फिल्म कयामत से कयामत तक से आपने सुना इस गीत को, आवाज़ अलका याग्निक और उदित नारायण। फिल्म संगीत गीत मालिका आप सुन रहे हैं पूजा भारती के साथ, और फिल्म संगीत में वो गीत जो अपने ज़माने के सुपरहिट रहे। अभी आपने सुना जिस गीत को इसके बोल भी उस वक्त बहुत सराहा गया, और अब जो आप सुनेंगे ये गीत भी अपने आप में लाजवाब है। फिल्म परिंदा से आप सुनेंगे इस गीत को।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने को है। अब सुनिए हिंदी में समाचार, समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इसी दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
4: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
4: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें

मट्टा ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
4: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलग वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
5: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज

0: संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा की विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर

0: bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parleys on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing 40-year-old system. Minister Ashwini Vaishnaw directs officials to ensure smooth transition. President of Vietnam Tho Lam emphasizes his country and India together have opportunity to be key players of global supply chain. And in archery, Indian women's recurve team ensures country's first medal at World Cup Stage 2, beating South Korea in semi-final at Shanghai. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जम्हूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़्म मुसम्मम की नुमाया मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल के गवर्नर ने असम्बली को तहलील कर दिया है। उधर तमिलनाडु और केरलम में सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन की मुंतकली का आगाज अगस्त से करेगा, जो 40 साल कदीम प्लेटफॉर्म की जगह लेगा। वजीर मौसूफ अश्वनी वैष्णव ने हुक्काम को सहल मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वियतनाम के सदर टो लाम ने जोर देकर कहा है कि वियतनाम और भारत के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के मौके हैं। और तीरंदाजी में भारत की खवातीन टीम ने शंघाई में सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया को हराकर आलमी कप के दूसरे मरहले में मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बनाया। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। पिछले साल आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों पर फजाई हमले किए गए, जिनमें कम से कम 100 दहशतगर्द हलाक किए गए। ये कार्रवाई पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में सयाहों पर होने वाले पाकिस्तान की पुष्पनाई वाले मुबैना दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ भारत की मुअस्सर कार्रवाई थी। इस मौके पर सदर जम्हूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने अपने पैगामात में ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दी और कौमी सलामती को लाहक खतरात के खिलाफ मुल्क के गैर मुतजल अज़्म की अलामत करार दिया। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी और मुल्क की खुद मुख्तारी और शहरियों की हिफाजत को खतरे में डालने वाली ताकतों के खिलाफ भारत के पुख्ता अज़्म का वाज़ेह सबूत है। मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि आज मुल्क अपने फौजियों की गैर मामूली बहादुरी, कुर्बानी और पेशावराना सलाहियतों को सलाम पेश करता है। नायब सदर सीपी राधा कृष्ण ने ऑपरेशन सिंदूर को एक फैसलाकुन लम्हा करार दिया, जब भारत ने अमन, इत्तेहाद और खुदमुख्तारी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाली दहशतगर्द ताकतों और दहशतगर्दी की पुष्पनाही करने वाले मुल्क के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की। वजीर आजम मोदी ने अपने पैगाम में कहा कि मुल्क दहशतगर्दी और उसके मुआविन निजाम को खत्म करने के अपने अज़्म पर कायम है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुसल्ला फौज ने इस कार्रवाई के दौरान बेमिसाल जुरात, दुरुस्तगी और अज़्म का मुजाहरा किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुसल्ला फौज ने उन अनासिर के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई की, जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह भारतीय शहरियों पर हमला करने की जुरात की थी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पूरा मुल्क मुसल्ला फौज की शुजात और बहादुरी को सलाम पेश करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात नशियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने के मौके पर भारतीय मुसल्ला फौज की बहादुरी और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। भारत ने आज कहा कि उसने सरहद पार की दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंहतोड़ जवाब दिया। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान सरहद पार की दहशतगर्दी को तवील मुद्दत से मुल्क की पॉलिसी के एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।
2: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: गैर कानूनी बांग्लादेशियों की वतन वापसी से मुतालिक एक सवाल का जवाब देते हुए जनाब जायसवाल ने कहा कि कौमियत की तौसीक के 2800 से ज्यादा मामलात बांग्लादेश के साथ इल्तवा में हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर क्याम पजीर किसी भी बैरूनी बाशिंदे को मुल्क के कवानीन जवाबित के मुताबिक उसके वतन वापस भेजा जाना चाहिए, उसके लिए बाहमी तरीकेकार और बंदोबस्त कायम करने चाहिए।
2: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
1: कनाडा में खालिस्तानी ग्रुपों से मुतालिक तर्जुमान ने कहा कि भारत ने इंतहा पसंद और अलाहदगी पसंद अनासिर के जरिए महफूज ठिकाने के तौर पर कनाडा की सरजमीन के इस्तेमाल से मुतालिक तश्वीश के बारे में मुसलसल आवाज उठाई है। नई सरकार तश्कील देने की तैयारियों के दरमियान मगरी बंगाल कानून साज असम्बली को बाकायदा तौर पर तहलील कर दिया गया है। गवर्नर आर एन रवि ने आईन की दफा 174 के तहत इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए आज मौजूदा असम्बली को तहलील करने के अहकाम जारी किए। ये इख्तदार की तब्दीली में एक नुमाया इकदाम है क्योंकि रियासत सनीचर के रोज हलफबरदारी के जरिए नई सरकार की तश्कील की जानब गामजन है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के एमएलए सुविंदु अधिकारी के करीबी साथी चंद्रनाथ रथ के कत्ल के सिलसिले में रियासती पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक 7 रुकनी खसूसी तहकीकाती टीम एसआईटी भी तश्कील दी है। ये टीम सीआईडी के इंस्पेक्टर जनरल के तहत काम करेगी। इसी दौरान पुलिस ने कत्ल के सिलसिले में सिलीगुड़ी के एक रिहायशी को हिरासत में लिया और तहकीकात की। उसके कार की नंबर प्लेट को मुबैना तौर पर उन हमलावरों के जरिए इस्तेमाल किया गया था जिन्होंने कल रात चंद्रनाथ रथ को कत्ल किया। तकरीबन 3 घंटे की तहकीकात के बाद पुलिस ने उसकी तरफ से इस यकीन दहाने के बाद उसे रिहा कर दिया कि वो मजीद तहकीकात में ताउन और मदद करेगा। तमिलनाडु में सियासी तातुल के दरमियान नई सरकार तश्कील देने के लिए बातचीत जारी है। इस सिलसिले में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज चेन्नई में टीवीके के सर सी जोसेफ विजय को लोकभवन मधु किया। लोकभवन से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि मीटिंग के दौरान गवर्नर ने यह बात वाजे की कि तमिलनाडु कानून साज असम्बली में मतलूबा अक्सरियती हिमायत जो सरकार तश्कील देने के लिए लाजमी है मौजूद नहीं है। केरलम के नए वजीर आला के बारे में फैसला नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के जरिए किया जाएगा। वो ये फैसला AICC मुशाहिदीन के जरिए पेशकरदा रिपोर्टों पर सलाह मशवरे के बाद करेगी। KPCC के सदर सनी जोसेफ ने कहा कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर को मुंतखब करने के लिए AICC के सदर को इख्तियार देने की करारदाद को आज सुबह तिरुवनंतपुरम में मुनाकिदा कानून साज पार्टी की मीटिंग में मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दी गई। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: आज की कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में AICC के उन मुशाहिदीन ने शिरकत की जो गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली से यहाँ पहुंचे थे। मीटिंग से कबल और बाद में मुशाहिदीन ने 2 मुंतखब कांग्रेस अरकान के साथ तबादला ख्याल किया जिसका मकसद क़यादत के मामले पर उनके नज़रियात को हासिल करना था। KPCC के सदर सनी जोसेफ ने कहा कि ये मुशाहिदीन जो दिल्ली वापस जाएंगे पार्टी की कौमी क़यादत को अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। VD सथीसन और रमेश चिन्नीथला समेत सीनियर लीडर उन कांग्रेस MLAs में शामिल हैं जो इस मरतबा मुंतखब हुए हैं। इसी दौरान एक और सीनियर लीडर KC सियासी जराए ने इंदिया दिया है कि कांग्रेस कानून साज पार्टी के लीडर और नए वजीर आला से मुतालिक फैसला इस हफ्ते के अख्ताम तक किए जाने की तवक्को है। इसी दौरान हलफबरदारी की तकरीब गवर्नर के चेन्नई से वापस आने के बाद ही होने की तवक्को है। गवर्नर इस वक्त वहां तमिलनाडु से मुतालिक सरकारी कामकाज में मसरूफ हैं। आकाशवाणी न्यूज से स्मृति M. पल्लू रूथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: रेलवे की वजारत ने आज ऐलान किया कि ट्रेनों की अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में मुंतकली का आगाज अगस्त में होगा। नई दिल्ली के रेल भवन में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने हुक्काम को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी कि 40 साल कदीम रिजर्वेशन निजाम से अपग्रेडेड निजाम में ट्रेनों की मुंतकली के दौरान मुसाफिरों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। पेश है एक रिपोर्ट।
1: 1986 में इब्तदाई तौर पर मुतारिफ किए गए रिजर्वेशन के मौजूदा निज़ाम में पिछले 40 सालों में बहुत सी छोटी छोटी तब्दीलियां की गई हैं। अलबत्ता इसकी मुकम्मल तौर पर ओवरहॉलिंग की जा रही है और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसकी सलाहियत में नुमाया तौसी की गई है। भारतीय रेलवे में 2002 में इंटरनेट पर मबनी टिकटिंग के आगाज के बाद से बड़े पैमाने पर डिजिटल तौर पर अक्सर तब्दीली आई है। इस अक्सर तब्दीली के तहत भारतीय रेलवे ने पिछले साल जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप मुतारिफ कराया था। यह ऐप तेजी के साथ मुसाफिरों में मकबूल हो रहा है और मुल्क भर में इसे रिकॉर्ड 3,50,00,000 अफराद ने डाउनलोड किया है। अब यह ऐप टिकट कंफर्मेशन के AI पर मबनी इम्कानात भी फराहम कर रहा है। इस सहूलत को इस साल के अवाइल में मुतारिफ कराया गया था और इसे बड़े पैमाने पर सारिफिन ने पसंद किया है। रेलवे के मुताबिक वेट लिस्ट कंफर्मेशन की पेशगोई की दुरुस्तगी पहले के 53% से बढ़कर अब 94% हो गई है। अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम उन लाखों मुसाफिरों को सहूलत दस्तयाब करेगा जो भारतीय रेलवे के जरिए सफर करते हैं। शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
0: इंडिया AI और तिब्बी तहकीक के भारतीय काउंसिल ICMR ने आज नई दिल्ली में सेहत के शोबे में जिम्मेदाराना मसनूई जहानत को फरोग देने के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा कि यह शराकत दारी मसनूई जहानत के जिम्मेदाराना और वसीतर इस्तेमाल से सेहत के शोबे में अच्छे नतायज की जानिब एक अहम कदम है। वजारत ने मजीद कहा कि इस मुआहदे के तहत बाहमी ताउन के लिए एक मुनज्जम फ्रेमवर्क कायम किया गया है जिसमें इंडिया AI के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और AI को निजाम की सलाहियतों को ICMR की हयातियाती तिब्बी तहकीक और सेहत आम्मा के शोबे में महारत के साथ यकजा किया जाएगा। वियतनाम के सदर टो लाम ने जोर देकर कहा कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के लिए अहम मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लाम ने कहा कि दोनों मुल्कों ने माजी में बाहमी इश्तराक ताउन के जरिए बहुत से चैलेंजों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों बिलखसूस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के शोबों में काम करने वाली कंपनियों को वियतनाम में सरमायाकारी करने के लिए मदऊ किया। दोनों मुल्कों के दरमियान वसी ताल्लुकात को उजागर करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि सियासी एतमाद के सबब 2016 से दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच गए हैं। सद लाम ने मजीद कहा कि मौजूदा आलमी मंजरनामा वाकई चैलेंज से भरा हुआ है, ताहम भारत और वियतनाम के दरमियान बाहमी ताउन को नई सतह तक ले जाने का भी एक बेहतर मौका है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों में टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबों से ताल्लुक रखने वाले कारोबारी अफराद, सरमायाकार और पेशावर अफराद एशिया के मुस्तकबिल को तश्कील देंगे। चीन के शंघाई में आज तीरंदाजी में भारतीय खवातीन रिकर्व टीम ने आलमी कप के दूसरे मरहले के सेमीफाइनल में जुनूबी कोरिया की 10 बार की ओलंपिक चैंपियन टीम पर शानदार जीत हासिल करके मुल्क के लिए पहले तमगे को यकीनी बनाया। दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने जुनूबी कोरिया की टीम को 5-1 से शिकस्त देकर इतवार को होने वाले सोने के तमगे के मुकाबले के लिए जगह बना ली। IPL क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ खेलते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने आखिरी खबरें मिलने तक 14 ओवर्स में एक विकेट पर 139 रन बना लिए थे। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क ने आज ऑपरेशन सिंदूर के एक साल मुकम्मल होने पर मुसल्ला फौज की जुरात, अज़्म और अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम ने इसे दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के अज़्म मुसम्मम की नुमाया मिसाल करार दिया। मगरबी बंगाल के

गवर्नर ने असेंबली को तहलील कर दिया है। उधर तमिलनाडु और केरलम में सरकार की तश्कील के लिए सियासी सरगर्मियां जारी हैं। रेलवे अपग्रेडेड पैसेंजर रिजर्वेशन की मुंतकली का आगाज अगस्त से करेगा, जो 40 साल कदीम प्लेटफॉर्म की जगह लेगा। वजीर मौसूफ अश्वनी वैश्यो ने हुक्काम को सहल मुंतकली को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वियतनाम के सर टोलाम ने जोर देकर कहा है कि वियतनाम और भारत के पास आलमी सप्लाई चेन में कलीदी रोल अदा करने के मौके हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: और इसी गीत के साथ ये जो गीत बहार फिल्म म्यूजिक का नॉन स्टॉप कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। 3 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
2: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ

0: स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच मजबूत और बहुआयामी साझेदारी पर बल दिया। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आर एन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वैत्री कड़गम टीवी के पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिनभर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवी के पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वर्ष 2026 में पराली जलाने की घटनाओं को खत्म करने की तैयारी की समीक्षा बैठक की। इसमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। आकाशवाणी के 90 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर आज राष्ट्रीय राजधानी में आकाशवाणी एक मैराथन का आयोजन करने जा रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन के गेट नंबर 3 से होगी। ये दौड़ कृषि भवन, रेल भवन और भारतीय रिजर्व बैंक बिल्डिंग से होते हुए आकाशवाणी के रंग भवन पर संपन्न होगी। इस दौड़ में आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के कर्मचारी और उनके परिवारजन भाग लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अजय कुमार। द नेशन यस्टरडे सैल्यूटेड द करेज, कमिटमेंट एंड सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। On this day last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on the 22nd of April last year. In their message on the occasion, the President, Vice President and Prime Minister described Operation Sindoor as a landmark expression of countries' uncompromising stand against terrorism and threats to national security. President Draupadi Murmu called Operation Sindoor as a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. President Murmu said the nation salutes the indomitable bravery, sacrifice and professionalism of our soldiers. Vice President C.P. Radhakrishnan termed Operation Sindoor as a defining moment when India responded firmly to terror forces and terror-sponsoring states attempting to disturb the peace, unity and sovereignty of Bharat. In his message, Prime Minister Narendra Modi said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Mr. Modi said the Indian Armed Forces displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces have fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added,

कार्यक्रम गजल गीत में आप बने हुए हैं चेतन कुमार शर्मा के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गजल जिसको संगीत और आवाज दी है निहारिका सिन्हा ने।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम गज़ल गीत में आप हैं चेतन के साथ, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गज़ल। आवाज़ है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की।

कार्यक्रम गजल गीत आप सुन रहे हैं या लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर, और मैं हूं आपके साथ चेतन कुमार शर्मा। कार्यक्रम में आगे आइए सुनते हैं एक और भी बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा।

और ये कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं मिताली और भूपेंद्र सिंह।

0: मिताली और भूपेंद्र सिंह के स्वर से सजे इसी गजल के साथ ये आज का गजल गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

மனசின்னுள்ளே மகிமகள் வந்தால் மகேஸ்வரன் வருமன்ன மணிகள்.

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 4:20:10। कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं सीरा गांजी एस गोविंद राजन का गायन, राग है कल्याणी।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सीर गजा है एस गोविंदा राजन का गाया राग कल्याणी। वंदे मातरम।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक सम्मत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई 2026। सुबह के 4:53 और 48 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय रहेगा तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा। प्रस्तुतकर्ता होंगे योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। स्वर रंजनी के कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर आप सुनेंगे मैत्री मजूमदार का गायन राग भटिहार में।

संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसमें आप सुनेंगे करण किशोर मिश्रा के भजन। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का समय रहेगा 7:30।

सुबह 8:45 पर कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत के स्वर गंगा के अंतर्गत आप सुनेंगे इंदिरा मुखर्जी का

0: गायन: राग होगा मिश्रा भैरवी और दादरा राग मिश्रा पीलू। गांधी चर्चा कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9:15, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता जिसका विषय होगा महात्मा गांधी और उनका तत्कालीन विश्व राजनीति पर प्रभाव। वार्ताकार होंगे आर एस सुंदरम। मिट्टी दी महक पंजाबी कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 और 10:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद फिल्म संगीत। 11:10 पर कार्यक्रम होगा सबरस। दिन में 11:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुर मंजरी में आप सुनेंगे सलीम कुमार का सितार वादन। दोपहर 12:10 पर कार्यक्रम घर आंगन जो महिला कार्यक्रम होगा इसका विषय रहेगा एक कदम बुजुर्गों की ओर, जिसमें आप सुनेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ता। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंहतोड़ जवाब था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। इस बीच नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
2: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
1: विदेश मंत्रालय में सचिव पश्चिमी सिवी जॉर्ज ने कल नॉर्वे के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित स्वागत समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री जॉर्ज ने भारत और नॉर्वे के बीच सशक्त तथा बहुआयामी साझेदारी पर जोर दिया। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने सीमा पार आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता की नीति को दोहराया और आतंकवाद के खिलाफ नॉर्वे के सहयोग की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के, एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम

15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और